असलम वालेकुम। मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, FM 100 शेरिंग मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर ये आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है।

0: नरेंद्र मोदी इस मन की बात प्रोग्राम इस ट्रॉली का स्थिति में मासूम नगर से डिस्कोर को आकाशवाणी दिल्ली
1: बनाई लेकर ये आकाशवाणी है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTS और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट, तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
0: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।

मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सबसे जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती है। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की ये ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचे। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे।

कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे,

सांस्कृतिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम यानी केवल एक साल के 20 रुपए का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं।

साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगिला। हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है।

दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें। इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में

लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती है। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती है। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको वृक्ष में बदला जाने

0: का, आज इन्हीं इको ब्रिज का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो, वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं, वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले, तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव

0: 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: दरअंतिस आकाशवाणी दिल्ली के नाम मन की बात प्रोग्राम यानी नितिन मीडिया मोबाइल दोनों एफएम के दिया आकाशवाणी करगिलिन वक्स पो तुसो चुंगिस ना सुमचु सुखने सेनु कसता मन की बात प्रोग्राम ही पुरगी तर्जमा प्रोजेक्ट नियन मजहत
2: निरिंचन चन्युल मींसा नमस्कार यार रिश्क मन की बात इस रुपयांग यं तामस प्रचार चचस बेका नलेक सिद्धत का चंचनोत निस्तोंग निशुर्चास द्रुगी लोला फेच्चेनोत दिल जात्रुक पेनोक नतेस युल्मी निर्ग्याल मुंग उचिकी कस्पेरतांस जून इल जैनोगां मिमां से चोक्सना यार्चन इन मिला सो मुंग मेग बसस्तांस गाज मिमां सुन नर्चन चाचुगत गाव युली स्ट्रुंग लुक्स नंगेंबो रंग चोक नंगेंबो थुनियत देजा गोने अनोक ना कलकत्ता बहरीये चोक्सना छिर बसियत खान ग्राल नंचिगे अनोक छे स्कापस्टॉप देर INS दुना गेरी INS संशोधक यंग INS आग्रीय दितुस्पे का भारती नौसेनी नए निर पेमुख स्ट्रेस दि जहाज उन्हें डिजाइन ना मैन्युफैक्चरिंग सप्पा नतीयुल खोरंगा लतानी अचुनून जून इल्जाव खुरियंग लोग एविएशन इस सेक्टर एंग लोगां अर्केस्ट्रिटिस चोर ग्याल्चिका शिवासें C-295 नम्टू मेड इन इंडिया यां ड्यूस गोमा भुर्चास पें फेते स्तानी ध्याना चोस यां नम्टू जिपचू दरंग भारत खुरियां लोग चतक चेंगत ड्यूस बसे MSME ना एरो स्पेस लूंपुआ स्केत यों अंचोत ड्यूस योंगे लंबिंग न्योत यांग रंगबोस्चन भारती दे संभव लंग रतन थोबिनो थे दिल जांग लोग DRDO चोसना यूली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल पॉन तजुर्बा बाप है तीन ड्यू DRDO लेबोरेटरी ना इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर से लगतु दिका गुजुक्स बस खानी गे तोनपो रग्यम्चुए थास्पे कना खेरे स्नम छापा नतिसके यूल भारती स्ट्रोंग लुक्स ना रंगबोसी नीलंपो मेंटर चुचावे अचुनों जून इल जैंगनोक यंग फ्रालुक्षिक दुरुल गाजेना मियुल गांपो भारत नियं बुद्रस दो इन मिन मियुल थोगी योगे फेस्पा जापो दिलवा मियुल गांग पैनोक लोक्सो मलचा निस्तों घबगे का लोक्सो योगे छिर्रिक दुरुल नति भायुल खुरियंगनोक लागिर सिसेंगनोक मेमांसिस लोक्सो मलचाने का स्क्योते योगे छिर पैनोक खापलेंस दिल जैंग अहमदाबाद यंग दुरुल खान वर्ल्ड यागोसन चैंपियनशिप पेगांग मेमांसी लोक्सो स्नांगा लोशासुन दियंग लोग भारत चोक्सना पोजिशन अर्ग्याना चुजबजी लेनमा लालचेपसुन गयंग लोग सेरी स्नानपार ग्याना निसांद्रस योतकाने नाती युलपु स्नानपा खिमोल लेन खानु निचेरप्यांग गोमे कलोस खाने नाज दिस दुर्न रात प्यांग लोग रग्याल थोप खान रेरे न रेरे क्रशेस ले आशिक जरत अचुनून गा युलचिगी छेव खरां देरी मिमां सुनी यां दे युलमी नी चोसना गाजत समझोए दुन ला जासर ग्यापना गाचोस क्युचिगा इनना दे क्युतपोस गापन इंचा मिन युले यार्यासे लोंपें मिमां से ला तुतना द्रेस्पु बहरती स्क्यासे मिचार भी बंबेगिन यां नस दिल सुए नम इन्ना लोपशेत लेनें चुकस्पत अचुनून एशे नुपस्कोस्पें द्रुलेन योत्पे थमून स्नंगे जासे नस यंतं युल्मीन ला जुआरिक बसकनें नस निंचे तुष्षिकी फिया सेरी चलागों सब मन्योस सेरे जुआ बाचाकनें में मिमांसुन ला फिस्तेर के स्त्रितुने अमुक स्कोर्यांस ला मसों जरे नस जुकनें में नस मिमांसुन ला कार पूलिंगी क्रिम्स पास केत क्यों जरें जो अबस्कने

राजघाट नुक रगाल बिल्जा खाचिक नुक प्लास्टिक केलू खाचिक

0: सफलता पाई है। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी आज सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय रक्षा बलों का दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी हैं। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि श्री राव ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्वकप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। उधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous, from the design to the manufacturing of these ships. The Prime Minister stated that in the month of June, the DRDO also successfully tested an indigenous long-range land attack cruise missile. This was developed jointly by DRDO laboratories and Indian industry partners. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies. The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold.
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेटेड दैट द पावर ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग इज अ ट्रेमेंडस एसेट फॉर इंडिया। ही सेड दिस पब्लिक पार्टिसिपेशन वाज सीन अगेन आफ्टर ही अर्ज्ड कंट्रीमेन ऑन अ फ्यू पॉइंट्स in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: The Prime Minister also spoke about the importance of the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. He said this scheme provides an insurance cover of 2 lakh rupees to a person's family in the event of their unfortunate death. In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. He cautioned people against believing in superstitions. Mr. Modi shared how the rare Hargila bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. He said the Hargila plays a vital role in keeping nature clean. Mr. Modi said that trees housing Hargila nests were even cut down due to superstition. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds. Indian assistance sent under Operation Amistad has reached Venezuela. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar expressed confidence that the field hospital unit, relief supplies, medicines and medical equipment will bolster ongoing post-earthquake relief efforts in the country. Prime Minister Modi and Defence Minister Rajnath Singh paid tributes to India's former minister P.V. Narasimha Rao on his birth anniversary today. In the ICC Women's T20 World Cup, India will take on Australia in their final Group A match at Lord's Cricket Ground in London today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है हमारी बहनों का प्रिय कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: बहनों हमारा राम
1: राम
0: और नमस्कार गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी दोस्त और मेरे साथ मेरी सह साथी
1: यमुना। तो पहली रेनु मैं आपको भी राम राम कह दूं और रेनु से तो हो गया राम राम
0: लेकिन राम राम
1: एक दूसरे से राम राम करना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि मुलाकात तो इस कार्यक्रम के जरिए होती है और हम दोनों आकर के मिलते हैं और बातें करते हैं।
0: हाँ, और बातों के साथ साथ अपनी ग्रामीण महिलाओं के साथ भी जुड़ जाते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं, मनोरंजन होता है। और आज जो धूप थी उसमें जो मनोरंजन मत पूछो, हाथ हालत खराब हो गई हमारी,
1: मतलब किसी तरीके से धूप में बचती बचाती यहाँ तक आए हैं।
0: बिल्कुल,
1: और सूती कपड़े से मुंह को खूब ढके हुए थे, पीने के लिए ठंडा पानी भी साथ में लिए थे, मतलब कुल मिला के अपनी कुछ न कुछ हिफाजत करते हुए यहाँ तक हम पहुंचे।
0: मुझे लगा आज इतना झोला उठाकर कैसे आई हैं।
1: अरे सत्तू का घोल रख लिए, कुछ ऐसी चीजें तासीर चीजें ठंडी चीजें रखे थे जिससे थोड़ा सा आराम मिले। तो ये चीजें तो सबको करनी चाहिए,
0: सबको करनी चाहिए। बहुत गर्मी है तो शरीर स्वास्थ्य है हर चीज का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अब जैसे हम पानी ना पिए तो डिहाइड्रेशन, मतलब अपने शरीर को पूरी तरीके से पानी पीना चाहिए, पानी के साथ साथ ठंडा मतलब नींबू पानी पीजिए और साथ में सत्तू का पानी पीजिए। तो ये सत्तू का जो जूस होता है बहुत ही फायदेमंद होता है, अंदर शरीर को ठंडक देता है और साथ साथ हमारी जो स्किन है यानी कि हमारी जो सुंदरता है वो भी ढीली पड़ जाती है क्योंकि गर्मी इतनी तेज है कि हमारी जो स्किन है वो काली होती चली जाती है। तो महिलाओं को तो खास तौर पर ध्यान रखना है, भाई वो इतनी खूबसूरत है तो और खूबसूरत बनी रहे।
1: और उनकी खूबसूरती का हम ध्यान रखते हैं तभी तो गृह लक्ष्मी कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है इसके जरिए हम उनको बहुत सी जानकारी भी देते हैं और पोषण से संबंधित भी बात बताते हैं, योग करने से क्या फायदे हैं इस पर भी हम चर्चा करते हैं और उनके मनोरंजन का पूरा पूरा ख्याल
0: रखते हैं। बिल्कुल, और आज मैंने भाई बता दूं अपने महिलाओं को कि आज मैंने अच्छा से लेप लगाया यानी कि एलोवेरा जो बहुत अच्छा होता है, तो मैंने आज सुबह सुबह बिल्कुल घर में रहता है, आपको कोई खर्चा पानी कुछ नहीं करना है, पौधा लगाना है और उसकी जो अंदर की जो जेल होती है वो निकालो और स्किन पर लगाओ और काम भी करो, आपको बैठना नहीं है।
1: अब मुल्तानी मिट्टी अगर घर में है तो उसे थोड़ा सा बारीक सा पीस ले, पाउडर बना के रख ले, उसका भी घोल करके अपने चेहरे पे लगा ले।
0: हाँ,
1: स्किन अच्छा रहेगा,
0: स्किन अच्छा रहेगा। और हम अलोम विलोम योगा तो करते ही हैं, उससे हमारी स्किन और अच्छी रहती है। तो ये सारी चीजें हमें ख्याल रखनी पड़ेंगी और पानी खूब पीते रहे, जितना पानी पियेंगे उतनी आपकी जो सुंदरता है निखरती चली जाएगी।
1: और सबसे बड़ी बात है जो बच्चे हैं साथ में उनको लेकर चल रही है तो उनका भी पूरा पूरा ख्याल रखें और सूती कपड़े पहनाए, खुद भी सूती कपड़े पहने, ऐसे कपड़े न लें कि जो गर्मी और बर्दाश्त न करने लायक बना।
0: बिल्कुल, और कहते हैं ना खादी सूती ये जो तो है हमारे बहुत सही रहते हैं, स्किन के लिए अच्छे रहते हैं, शरीर के लिए अच्छे रहते हैं। और मुंह पर पूरा कपड़ा अच्छे से ढककर जाएं, अपने शरीर को पूरे तन को ढककर रखें क्योंकि ये जो धूप है ना ये नुकसान पहुंचाती है और आप चक्कर खा के भी गिर सकते हैं भाई, इतना ध्यान रखें। छाता भी लेकर चले अपने साथ,
1: बिल्कुल शरीर को ढके रखें और अपना पूरा ख्याल रखें और धूप की सफर को
0: एक सुहाना सा बनाते हैं इस गीत के साथ।
1: बिल्कुल।

0: आजकल बहुत सारी महंगाई बढ़ गई है और महंगाई बढ़ते बढ़ते हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे महिलाएं तो वैसे भी खासतौर पर बहुत ध्यान रखती हैं कि हमें बचत करनी है, है ना, और हर जगह काम आता है और महिलाओं का ये बड़ा अच्छा तरीका है कि कहीं ना कहीं छुपा छुपू के अपना अपने पैसे ना संभाल कर रख लेती हैं और वो काम आता है जब जरूरत होती है।
1: कुल मिला के महिलाएं जो भी पैसे इधर उधर से दाएं बाएं कहीं से निकालती हैं या पति से पाती हैं या रिश्तेदारों से पाती हैं, बच्चों के पैसे भी इकट्ठा करके रख लेती हैं, तो सारे पैसों का सच बताएं ना बहुत बड़ा यूज होता है उनके लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जमा कर देती हैं, जमा नहीं करती हैं अगर नहीं बैंक तक जा रही तो घर में ही इकट्ठा करके रखती है। लेकिन अब तो बहुत समझदार हो चुकी महिलाएं, और देखो सबसे बड़ी बात ये रेनू की जीवन का कोई भरोसा नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: तो ऐसे में देखा जाए तो बीमा भी होना बहुत
0: जरूरी है। और आज तो बहुत खास दिन है, तो बीमा पर अगर हम बात करें तो आज है अंतर्राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, और इस पर ये कहते हैं ना आपदाएं इतनी आने लगी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ गई, चिकित्सा पर आपातकाल कुछ ऐसा आ गया, अनहोनी हो जाती है, तो इन सब चीजों पे बीमा होना बेहद जरूरी है, और इसी पर आधारित आज का ये दिवस मनाया जा रहा है
1: 28 जून।
0: हाँ,
1: और जब बीमा सुरक्षा की बात होती है तो जैसे आपने कहा अनहोनी हो जाती है, तो मैंने वही कहा ना कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि बीमा की बहुत सी पॉलिसियां आई हैं, बहुत तरीके की सरकार द्वारा भी चलाई गई हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि आप जो भी पैसा इकट्ठा करें उससे सही

0: जगह लगाएं, सही तरीके से पता करके लगाएं, कभी भी ऐसा ना हो कि आप ठगी का शिकार हो जाएं। तो कोशिश ये करनी चाहिए जो भी आपके पास पैसे आते हैं सही जगह अगर आप लगाती हैं तो सच कहें कभी जीवन में कोई ऐसी घटना घटती तो आपके लिए वो बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही सहायक साबित हो सकता है वो जो अमाउंट आपने जमा कर रखा है।
1: बिल्कुल। और हमारी आज की एक और, जैसे हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भी एक बीमा योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो ये जो है जो सरकार द्वारा चलाई गई वो एक सस्ती सी योजना है, आप इतना घबराएं नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे कि 18 से 50 वर्ष के जो बैंक खाता धारक हैं वो 436 वार्षिक प्रीमियम दर देकर सिर्फ इतना ही अमाउंट, सिर्फ इतना ही मूल्य देकर 2,00,000 का जीवन बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं।
0: और सबसे बड़ी बात ये रेनू की जो आपका खाता है जहां खुला हुआ है वहाँ पे सिर्फ ऐड कराना होता है, जैसे आप जीवन बीमा ये योजना की बात, जीवन ज्योति बीमा योजना की बात बैंक में बताएंगे तो 436 रुपए जो कटेंगे वो आपके जो जमा है धनराशि उसी में से कट के ऑटो डेबिट है, मतलब वो अपने आप कट जाता है, इकट्ठा होता रहता है और समय आने पर वो अमाउंट आपको मिल जाता है।
1: यानी कि 55 साल तक की एक ही है इसका, आप उसको रिन्यू यानी कि नवीकृत करा सकते हैं। तो आपको इतने घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगे।
0: बिल्कुल। और इस पॉलिसी की बात करें तो इसमें 55 वर्ष की आयु तक रिन्यू कराया जा सकता है, जमा करने का तो 18 से 50 वर्ष का है लेकिन उसमें रिन्यू ऐसे किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात योजना का लाभ लेने किसी भी बैंक या डाकघर जो भी बचत खाता आपके आसपास वहाँ संपर्क आप कर सकते हैं। गांव की महिलाएं हैं तो आंगनबाड़ी वाली की आती है कार्यकर्ती, तो उनसे भी संपर्क करके आप इन सब चीजों का लाभ पा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो जो पैसे आप घर में ऐसे ही डिब्बे में या चावल के पोटली में
1: जो कहीं पहले के जमाने में किया जाता था,
0: अभी भी बहुत से ऐसे रेनू अभी नहीं निकल पा रही है और चुपके से रखी है तो बता भी नहीं सकती पति को या किसी को कि मैंने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए मेरा जमा करा दो। तो ऐसे में जो हमारी आशा कार्यकर्ता है या हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है गवर्नमेंट द्वारा जा रही है आसपास तो उनसे भी सहायता ले सकती हैं, जानकारी ले सकती हैं।
1: बिल्कुल। और यमुना ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि और बहुत सतर्कता से, मतलब आप ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी ने बोला और आपने कर दिया, आप पूरी जानकारी ले पहले और उसके बाद जाकर
0: बैंक जा सकती हैं, बिना आपके गए तो काम नहीं हो सकता, एक बार तो आपको जाना ही पड़ेगा, खाता खुलाना पड़ेगा, ऑटो डेबिट कराने, चाहे वो हमने बीमा योजना की बात की उसकी हो चाहे जीवन योजना दोनों की बात करें, तो आपके जीवन की सुरक्षा जो है आप जो अमाउंट जमा करते हैं उसके जरिए हो सकता है।
1: बिल्कुल। और 1 जून को ये अब आपके खाते में ऑटो डेबिट हो जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा, तो एक बार आप जाइए घर से बाहर निकलिए और ये कदम उठाइए, ये आपके और आपके परिवार के लिए बेहद फायदेमंद होगा।
0: और जब हाथ में पैसा होता है तो कुछ बात ही अलग होती है।
1: और अगर महिलाओं के हाथ में हो तो क्या बात है
0: तो महिलाओं के हाथ में होती है लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब वो कुछ पहनती है, ओढ़ती है, कुछ चाहती है तो वो डिमांड भी करते हैं अपने घर की जो घर वाले हैं उनसे, कहते हैं भाई कुछ मेरे लिए बनवा दो ना। और नहीं तो फिर वही है ना कि उनके हाथ में जब कोई चीज देखता है तो हस्बैंड भी कुछ बोल पड़ता है, तो पतिदेव भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, इस गीत के जरिए सुनते हैं ना,

0: यमुना, कितना खाने पीने का हम ना ध्यान देते ही नहीं आजकल। बच्चे भी कुछ भी खा रहे हैं, बड़े कुछ खा रहे हैं, आजकल तो फास्ट फूड का जमाना हो गया है। नहीं कभी कुछ खा रहे कभी कुछ खा रहे, बीमारी अपने अंदर खुद ही हम निमंत्रण दे रहे हैं, आओ जी बीमारी हमें ले लो फटाफट, क्योंकि हम खान पीन पे ध्यान ही नहीं दे रहे। गर्मी भी है, मौसम भी ऐसा है, और खाने पीने पे ध्यान ना देंगे तो बीमार तो होंगे ही। अब आप बताओ, मैं तो आजकल ना मैंने सच में ना मोटे अनाज खाने शुरू कर दिए।
1: मैं आपकी बातों को सुन रही हूँ, ध्यान से कहना चाह रही हूँ कि मतलब फास्ट फूड का जमाना है।
0: हाँ।
1: लेकिन हम कहते हैं फास्ट फूड का जो वो जमाना नहीं है, जमाने में हम अपने आप को ढालते जा रहे हैं। तो जरूरत ये है कि हम फास्ट फूड की तरफ ध्यान न दें।
0: हाँ।
1: अपने श्री अन्न की तरफ हम ध्यान दें, अपनी थाली में वो सारी चीजें हम पोषक तत्वों को शामिल करके खाएं। तो और वैरायटी भी है कि किस किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसे लजलर कैसे बनाया जा सकता है, और इसकी क्या क्या चीजें, जो आप चीज खा रहे हो बाहर चाहे कुछ भी रख लो फास्ट फूड में, वो सारी चीजें हमारे श्री अन्न से बन सकता है। लेकिन कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, अभी बाद भी ये प्रश्न आता है लाजमी है। तो बन ऐसे सकता है क्योंकि इसको बनाने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आ चुकी है।
0: बिल्कुल, पोषण सुरक्षा हेतु श्री अन्न पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शुभांगी सिंह,
1: क्योंकि
0: फाउंडर गोल्डन मिलेट्स की नई दिल्ली से हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं शिव नंदन लाल।
1: तो चलिए सुनते हैं कि वैरायटी कैसे कैसे श्री अन्न की हम ले सकते हैं अपनी भोजन की थाली में।
0: बिल्कुल,
2: किसान भाइयों नमस्कार। सभी लोगों को चिंता रहती है अपने स्वास्थ्य के, और स्वस्थ रहने के लिए निश्चित तौर पर आपको जिस तरीके से खाना पानी हवा की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से अगर खाने में बात की जाए तो आपको सभी पोषक तत्वों की भी जरूरत पड़ती है जो आपके खाने में होने चाहिए। और पोषक तत्व जब ही होंगे जब वो हम अनाज खाएंगे, वो उत्पाद खाएंगे।

0: के अंदर उनकी मात्रा भरपूर पाई जाती है। और हमारे देश में पहले अगर हम देखें तो जो हमारे मोटे अनाज जिनको कहते हैं उनका सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था और सभी लोग स्वस्थ रहते थे, उनको कोई किसी तरीके की ज़्यादा परेशानी या दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब से चलन मोटे अनाज का कम हुआ है और दूसरे खाद्य पदार्थों का बढ़ावा हुआ है तब से सभी लोगों में कुछ न कुछ परेशानी देखने को मिलती है। तो जो हमारे मोटे अनाज हैं जिन्हें हम श्री अन्न कहते हैं उनका हमारी पोषण सुरक्षा में क्या महत्व है, ये किस तरीके से दूसरे विकल्प के रूप में हो सकते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शुभांगी सिंह जी को, जो कि गोल्डन मिलेट नई दिल्ली में उसके फाउंडर हैं। शुभांगी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जो मिलेट हैं तो ये पहली बात तो कौन कौन से हैं जो हमारे रोजमर्रा में प्रयोग किए जा सकते हैं?
1: मिलेट बहुत तरीके के होते हैं, लोगों को लगता है कुछ दालें भी हैं जो मिलेट्स में आती हैं, बट ऐसा नहीं है। ये मिथ मैं सबको बता दूं कि 12-15 तरीके के मिलेट्स होते हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ज्वार, बाजरा, रागी, ये सबको पता होता है। उसके बाद आता है चलाई, जिसको राजगिरा कहा जाता है, जिसको हम फोड़ के पॉपकॉर्न की तरह लड्डू भी बना के हम व्रतों में खाया जाता है। उसके बाद आते हैं सामक के चावल, स्पेशली नॉर्थ साइड में उसको सामक के चावल कहते हैं, साउथ में उसको भगर कहते हैं। उसके बाद आता है कुटकी, कुटकी बहुत छोटा दाना होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और आयरन की मात्रा इसमें बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आता है कोडो, कोडो को कुछ क्षेत्रों में हमारे भारत के कोदा भी कहा जाता है एंड इसके अंदर जिंक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो हमारे ब्लड के लिए भी जरूरत होती है और हमारे गट के लिए भी बहुत जरूरत होती है। उसके बाद आते हैं कंगनी, कंगनी में कैल्शियम बहुत होता है, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। उसके बाद आता है, दो ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा जाने नहीं जाते मगर हमारी बॉडी के लिए एंटी कैंसरस का काम करते हैं, उनका नाम है प्रोसो, जिसको बिहार साइड में चीना भी कहा जाता है। और लास्ट है ब्राउन टॉप, ब्राउन टॉप को हरी कंगनी का नाम दिया गया है क्योंकि इसका जो चावल है, मिलेट का चावल है, वो हरे रंग का होता है। तो ये कुछ लगभग हैं जो ज्यादा जाने गए हैं। इसके साथ और भी हैं बट वो कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बहुत लार्ज मात्रा में पाए नहीं जाते। तो ये लगभग अगर सबको नाम और वैसे देखना हो, सब मार्केट में भी अवेलेबल है और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप जाके इन्हें देख भी सकते हैं। हमारे जो भारत के अंदर दिल्ली के अंदर एक क्षेत्र बनाया गया है जहाँ पे मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर है, वहाँ पे आप जाके इसको देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप टेस्ट भी कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने कई जो हमारे मिलेट हैं उनका जिक्र किया, लेकिन इतने मिलेट हमारे देश में हैं और इनका उत्पादन भी होता है, लेकिन इसकी तरफ लोगों का रुझान क्यों कम हुआ?
1: जब हम इतना ज्यादा एक ही अनाज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे हम अगर लंच की बात करें, हमारे यहाँ चावल या गेहूं की रोटी यही सबसे ज्यादा फेमस है। अब इसके अंदर मोटे अनाज को डालें कैसे, ये हमारी पहले के पीढ़ियों को सबको पता था और बहुत अच्छी अच्छी व्यंजन बनाए जाते थे इससे। बट आज के टाइम पे एक तो समय की पाबंदी है लोगों के पास, दूसरा इसको बनाने के लिए लोगों को लगता है बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा या कुछ अलग तरीके का प्रक्रिया होगा।
0: तो जब बनाने की बात आए तो इनसे कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं?
1: जी सबसे ज्यादा तो अगर हम ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक बात करें, ब्रेकफास्ट से अगर हम शुरू करते हैं तो आप सबसे पहले जो मिलेट के पोहे आते हैं आप उससे स्मूदीज बना सकते हैं। बच्चों के लिए शेक इतना अच्छा वो है, उसमें डेट्स डालिए, उसके अंदर किशमिश डालिए असली मिठास के लिए, फ्रूट्स डालिए असली मिठास के लिए, उसमें भीगे हुए पोहे डालिए, इससे आपकी स्मूदी बन सकती है। फिर आपके चीला हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, उत्तपम हो गया, जितना साउथ इंडियन व्यंजन है वो बनाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसके दलिया ले सकते हैं, ज्वार का दलिया, बाजरे का दलिया, इनसे आप दलिया बना सकते हैं सुबह। ये आपके ब्रेकफास्ट को इतना हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, जो आजकल इतना सब लोग चल रहा है कि इंडिया में प्रोटीन की कमी रहती है, वो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट आपका इसी से ही कम्प्लीट हो सकता है। मगर बनाने का तरीका बहुत आसान है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सीखना चाहें तो लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। फिर आते हैं हम लंच पे। देखो वैसे तो मिलेट खाने के बाद लंच तक भूख नहीं लगती, मगर फिर भी अगर किसी को भूख लगती है तो आप रोटी या चावल को इसमें एड ऑन भी कर सकते हैं अपनी रोटी के अंदर, जैसे कुटकी का आटा या कंगनी का आटा या ज्वार का आटा आप ऐड कर सकते हैं, उसको मल्टीग्रेन बना सकते हैं। अगर वो नहीं तो मैं तीन तरीके की, चार तरीके की आपको रोटियां बनाती हूँ। अगर मैं रोटियां आपको बताती हूँ तो सबसे पहले आता है सामक

0: की रोटी, चमक की रोटी आपके डायबिटीज को कंट्रोल करती है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपके ब्लड में जाके आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हैंडल करती है, आपके शुगर स्पाइक को हैंडल करती है। दूसरी आती है रागी की रोटी। रागी की रोटी अगर आप खाते हैं तो आपको नेचुरल विटामिन डी और कैल्शियम मिलता है। 98% आपका लिवर यहाँ पे कैल्शियम अब्सॉर्ब करता है। इसका मतलब है आपके दूध से ज्यादा, आपके पनीर से ज्यादा, आपके हर चीज से ज्यादा कैल्शियम आपके रागी के अंदर एब्सॉर्प्शन लेवल। बच्चों के लिए तो सुपर ग्रेन है ये। तीसरी रोटी जो आती है बाजरे की रोटी। सबको लगता है बाजरे की रोटी बहुत गर्म होती है, बट ऐसा नहीं है। तासीर उसकी अगर आप खाएं तो वो शरीर के अंदर से गर्मी निकालती है, इसका मतलब शरीर को ठंडा रखती है। तो आपके फाइबर इश्यूज, अगर आपके पेट में दिक्कत है या कुछ भी है, आप जो भी जब भी बनाएं तो बाजरे की रोटी में थोड़ा सा जो हमारा इसबगोल होता है वो डाल लीजिए। आपका पेट इतने अच्छे से रहेगा कि ना आपको इश्यूज होंगे, ना ही आपको कोई भी गर्मी जैसा लोग बोलते हैं वैसा होगा। और आखिरी रोटी जो आती है वो है ज्वार की रोटी। अगर किसी को भी खून को साफ करने की या हाइपरटेंशन, बीपी, डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिड इश्यूज अगर किसी को भी है, पेट से रिलेटेड अगर इश्यूज हैं, अगर वो ज्वार की रोटी एक भी दिन, दो भी दिन अगर साथ में खा लें तो उनको तीसरे दिन से फर्क दिखने लग जाएगा कि हमारा पेट आज बहुत बेटर है पिछले दो दिन से। तो ये तीन चार तरीके की रोटियां हैं, अगर हम इन्हें बनाना सीख लें, बहुत इजीली गर्म पानी में बनती हैं ये, अगर सीख लें तो बहुत ही ज्यादा आपका लंच बेटर हो सकता है।
1: और दूसरी बात, क्योंकि सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय समय कम होता है
0: जी।
1: तो क्या ये कुछ चीजें बनी हुई भी मार्केट में उपलब्ध होती हैं जिनको बहुत जल्दी से बनाया जाए?
0: बिल्कुल सही है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शेक मिक्स हो गया, प्रीमिक्स, चीला के प्रीमिक्स हो गए, आपको इसमें सिर्फ पानी या दही मिलाना है और आपको घोलना है और फिर बना सकते हैं। ऐसे प्रीमिक्सेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर और बहुत इजीली इनको आई थिंक 5-10 मिनट्स के अंदर अंदर ही बनाया जा। एक तो बच्चों को मैंने देखा है आजकल मीठा या चटपटा बहुत अच्छा लगता है। आजकल जैसे चिप्स वगैरह खाते हैं तो वो चिप्स क्योंकि उसमें चटपटा एक फ्लेवर होता है उनको वो पसंद होता है, या एक पैनकेक या मिठास की तरफ जाते हैं, केक की तरफ, पेस्ट्री की तरफ। तो ये सारी चीज ना आप मिलेट से अगर बनाएंगे ना, तो एक तो आपको नेचुरल कोई भी स्वीटनर डाल सकते हैं आप, जैसे जैगरी हो गया या डेट्स हो गए, या फिर आपने किशमिश डाल के कर दिया तो इससे आप पैनकेक बना दीजिए। चीला भी बना रहे हैं तो चटपटा चीला बनाइए, उसमें मसाले वगैरह डाल के बनाइए, जीरा डालिए, चाट मसाला डालिए, इससे बच्चे बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। और दूसरा, अगर आपको उनकी स्नैकिंग, जैसे हमने चिप्स वगैरह की बात करी, अगर इसे रिप्लेस करना है तो मिलेट के वो भी अवेलेबल है। आप घर में तो बना ही सकते हैं, जो लोग बनाते हैं बना सकते हैं, बट मार्केट के अंदर भी अवेलेबल है, वो भी ट्राई कर सकते हैं, बच्चों के लिए रिप्लेसमेंट में बहुत अच्छा काम
1: करते हैं। कि हमारा एक बाजरा है या कुछ ऐसे और भी मिलेट हैं जिसका आटा बनाने के बाद वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता, वो खराब हो जाता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो इसको सही रखने के लिए भी कुछ उसमें मिलाया जाता है, क्या है तरीका?
0: जैसे मार्केट के अंदर अगर आप जाते हैं तो एक तो जब भी आप पिसवाएं तो अपने सामने पिसवाएं,
1: मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे श्री अन्न है वो पोषण सुरक्षा के लिए काफी विकल्प हो सकते हैं अगर इनका सही तरीके से प्रयोग किया जाए और अपने खाने में सम्मिलित किया जाए। तो हमारे जो श्रोता हैं, कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो अपने खाने में श्री अन्न की मात्रा को बढ़ाएं, उसके लिए आप उन्हें क्या कहना चाहें?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि अपनी सेहत जो है हमारे खुद के एक छोटे से बदलाव से ही शुरू होती है। हम घर में जो स्वादिष्ट हमें बाहर खाना मिलता है, बाहर व्यंजन मिलता है, यह सब कुछ हम घर पे भी बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी कुजीन हो, चाहे वो भारतीय कुजीन हो, चाहे वो जापनीज कुजीन हो, चाहे वो नूडल्स पास्ता हो, चाहे वो मोमोज हो, सब चीज के अंदर मोटे अनाज को आप डाल सकते हैं और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। रेसिपीज आपको बहुत सारे लोग हैं जो आजकल इंटरनेट पे सिखा रहे हैं, तो आप उनसे भी सीखिए, वीडियोस देखिए। हम अपने ही पोषण के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए अगर एक दो वीडियो से कुछ सीख के अगर कुछ अच्छा बना सकें 5-10 मिनट के अंदर अंदर, चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बच्चे हो, इसे कोई भी बना सकता है और बहुत टेस्टी बन सकता है।
1: जी बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप एकदम मत शुरुआत कीजिए, थोड़े थोड़े करके आप शुरू करिए, जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और दूसरे कि जो हमारे मोटे अनाज हैं या श्री अन्न है, अगर हमारे किसान भाई इनकी खेती भी करते हैं, इनमें कोई ज्यादा लागत की जरूरत नहीं होती है, न इनको ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है, कम लागत में हो सकते हैं और दूसरी फसलों के साथ भी इनको उगाया जा सकता है।
0: श्री अन्न के लिए आप अगर फार्मिंग साइड में है तो वहाँ पे भी इसके अंदर सब्सिडीज हैं। अगर कोई उद्यमी है, अगर ब्रांड बनाना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, तो बहुत सारी अलग अलग विकल्प हैं।

0: मशीन खरीदने के विकल्प अलग हैं, जो स्कीम्स अलग हैं, अगर लोन लेना है वर्किंग कैपिटल के लिए वो अलग है, उद्यमी को अगर शुरू करना है पैकेजिंग साइड में, अगर इसको पैक करके कुछ सामान आगे भेजना है तो उसके लिए भी एजुकेशन साइड में भी बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम्स खोले हैं, उन्होंने एजुकेशन के लिए वीडियोस बनाई हुई हैं। तो सीखने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है, मगर बस एक जज्बा चाहिए। आप घर से भी छोटे लेवल पर शुरू कर सकते हैं, मशीन्स भी बहुत छोटी छोटी अवेलेबल हैं आजकल, और उसको करने के बाद आप मार्केट अगर ढूंढे तो मार्केट के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत जगह स्टॉल देती है,
1: उसके मेले लगाते हैं,
0: मेले भी लगाते हैं, और आपको हो सकता है गवर्नमेंट्स के अंदर खरीदारी भी होती है, प्लेटफॉर्म जैसे ONDC वगैरह प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी बनाए हुए हैं। तो करने के लिए बहुत कुछ है, बस
1: आपको जागरूक होने की जरूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, बिल्कुल। शुभांगी सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और निश्चित तौर पे आपने श्री अन्न के बारे में काफी कुछ बताया कि किस तरीके से इससे पोषण सुरक्षा की जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्री अन्न से कैसे पोषक तत्वों को शामिल करके कैसे बेहतरीन तरीके से हर चीज हम बना सकते हैं, खा सकते हैं, इसी विषय पर श्री अन्न से जुड़ी बहुत सी बातों पर बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी डॉक्टर शुभांगी सिंह, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। और थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और श्री अन्न की ही बात हम कर रहे हैं, तो श्री अन्न को कैसे लोकगीत के जरिए ब्रजपाल चरौरा अब बताना चाह रहे हैं, चलते हैं सुनते हैं ये वाली लोकगीत।
3: अरे मोटे अन के अरे भोज बनाओ

0: यमुना, अभी हमने सब को सुनाया और खुद भी सुना, क्योंकि ये है ब्रजपाल कलाकार की आवाज में, ब्रजपाल चौरसिया जी की आवाज में मोटे अनाज पर जो हमने लोकगीत सुना, बेहद ही खूबसूरत था। और एक बात, यहाँ आज ना मैं सोच रही थी खूब भागदौड़ तो मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो, इतना भागते हैं हम सारी महिलाएं, घर का भी करती हैं, बाहर का भी करती हैं, अपना ख्याल रखती हैं आप? अपना बताओ, आप कितना करती हो?
1: देखो, सबका ख्याल रखते रखते ना अपना ख्याल रखना ही हम भूल जाते हैं, सच तो ये है, जो सच्चाई है उसे बता रही है ना, अपनी ही सच्चाई नहीं, हमारी जितनी बहनें हैं सबके साथ ऐसा होता ही है,
0: हम पूरे परिवार के सबके ख्याल रखें लेकिन अपना नहीं रखते हैं। हमें लगता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं कल कर लूंगी। आज मैंने, पता सच में मैंने खुद सोचा था कि अब तो मैं रोज योगा करूंगी, लेकिन मैं सोचती रह गई, कल किया था आज रह गया, सोचा अरे ये काम कर लेती हूँ पहले वो कर लेती हूँ, लेकिन वो भूल गई जो मेरे लिए जरूरी था।
1: एक बात और है, ये बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि बहने कहती मैं सारा दिन तो दौड़ दौड़ के काम करती हूँ, योगा करने की क्या बात है, लेकिन सच कहें योगा सिर्फ अगर देखा जाए तो ये नहीं कि भाग दौड़ आपने कर लिया तो योगा हो गया आपका, वो शारीरिक जो एक फिजिकल जो हमारा वर्क होता है, जो शारीरिक भाग दौड़ हम करते हैं, चलो ठीक है आप फिट बनाए रखें अपने आप को, लेकिन जब आप थक के बैठती है ना तो सुकून का जो पल होता है ना, तो योगा में जब हम बैठते हैं तो शांति, वो सुकून और वो प्रकृति से जुड़ने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया उसे आप खो देती हैं अगर आप योगा नहीं करती हैं तो।
0: और शरीर से ज्यादा ना मानसिक रोगी हो गए हम लोग, हम बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम क्यों हो रहे हैं, लेकिन ये सच में ये एक तनाव ही है, जो हमें छुपा हुआ तनाव, एक मानसिक तनाव, और इसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है आप योग करें
1: और थोड़ा सा पल अपने लिए सुबह का निकालिए और प्रकृति के साथ बैठिए। नहीं आप दूर दराज जा पा रही, जैसे खेत खलियान के पास ही जा रही तो आप कुछ नहीं, एक टाट पट्टी भी चाहिए, वहाँ सुकून से अपने खेत के पास ही बैठ जाइए, वहाँ भी सुकून से आप करती हैं, आपको तो हरा भरा मौसम मिला है। और अगर शहर की हमारी बहनें कार्यक्रम सुन रही हैं तो वो भी अपने जो उन्होंने बागवानी थोड़ी सी कर रखी है लगा रखे उसी के बीच बैठ जाइए, तो थोड़ा जब हम प्रकृति से तालमेल बैठाते हैं, उनसे कहते हैं ना जो पत्तियां हैं उनमें भी जीव है, पेड़ पौधों में भी जीव है, तो एक तरीके से हम उनसे जब जुड़ते हैं, बात करते हैं, जब हम उनसे जुड़ते हैं, ये शांति ये सुकून के पल को जीने की कोशिश करते हैं प्रकृति के साथ, तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति हमसे बातें करती है और हम उससे जुड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम ऐसे जुड़ेंगे तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा, तो तन भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, और जो हमारी ये काया है ये निरोगी रहेगी हमेशा के लिए,
0: हमेशा के लिए। और बिल्कुल ये कहते हैं कि इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और जो महिलाएं हैं जो गुस्सा करती हैं उनकी, और जो भूल जाती हैं उनकी एकाग्रता भी बढ़ जाती है, तो ये जो भावनाएं हैं, हम कई बार होता है ना महिलाएं रोने लग जाती हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता वो रो किस वजह से रही हैं, तो ये एक मानसिक रोग ही है जो हम अपने अंदर बैठा रहे हैं, लेकिन इनको दूर करने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि आप प्रकृति से जुड़े, प्रकृति के साथ साथ जुड़ने का मतलब वहां बैठे, आलोम विलोम श्वास तो हम लेते ही हैं, तो थोड़ा खुलकर ले लें और इस बाग बगीचे के साथ, प्रकृति के साथ, तो और गर्भावस्था में तो खास तौर पर ध्यान रखें कि इस अवस्था में हम कहते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन योगा करना बेहद जरूरी, और वो डॉक्टर की सलाह से जो वो बताएं उस तरह के योगा करें, जैसे कि अलोम विलोम करें, आराम से बैठ के श्वास ले सकें, इस तरह के करें तो आपके बच्चे के लिए भी और आपके लिए दोनों के लिए फायदा।
1: बिल्कुल, तो फिर मैं यही कहना चाहूंगी कि तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, सुंदर हो स्वास्थ्य हमारा, और योग बिना कोई संभव ना हो जीवन की ये धारा,
0: क्या
1: बात, चलिए जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि जब कोई खूबसूरत लगता है तो फिर ये लगती है, तो फिर कैसे और क्या कहते हैं इस गीत के जरिए।

0: ये बना आज खास दिन है, जैसे कि हर महीने की रविवार खास दिन होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कही जाती है, और मन की बात के इस कार्यक्रम में आज जो था वो 135वां एपिसोड था, जिसमें कुछ खास बातें उन्होंने कही, जैसे कि समुद्र से आकाश तक भारत जो है सुरक्षित, यानी कि ऐसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हाल ही में सफल हुए मिसाइल प्रशिक्षणों का जिक्र किया और कहा कि देश के सैन्य शक्ति और रक्षा क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहे हैं, और आत्मनिर्भर नौसेना का विस्तार भी इस तरह से हुआ कि कोलकाता में आयोजित नौसेना कार्यक्रम का जिक्र किया, जहां INS दूनागिरी और INS शशधक और INS आगरे जैसे पूरी तरह से स्वदेशी युद्ध पोतों को नौसेना में शामिल किया गया।
1: और सबसे बड़ी बात ये भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भी हाल ही में संपन्न हुआ है, योग दिवस के भव्य आयोजन की उन्होंने सराहना भी की और नागरिकों से योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जैसा कि हम भी रेडियो के जरिए बार बार आपसे कह रहे हैं। और सकारात्मकता की बात करें और सामूहिक प्रयास की हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली प्रयासों, जैसे पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की हम बात करें तो उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की और साथ साथ ये भी कहा कि आप भी ऐसा प्रयास करते रहें।
0: बिल्कुल, तो ये थी हमारी प्रधानमंत्री द्वारा कही मन की बातें, और इसी के साथ कुछ बातें कहते हैं ना कि गीतों से भी हम जोड़ सकते हैं इस बात को, क्यों नहीं?
1: बिल्कुल, अगर हम जीवन में कुछ करते हैं तो उसमें बड़ी खुशी भी होती है कि हाँ हम इस उपलब्धि को पा लिया तो ऐसे भी अगर कुछ काम मन की बात के जरिए अगर कोई गुजारिश कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, या हम भी अपने से कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो खुशी मिलती है इस गीत के जरिए हम बयां कर सकते हैं।

0: पद्मश्री अवार्ड की बात की जाए तो यहाँ 19 महिलाओं को मिला, जिसमें कि महिला क्रिकेट टीम कप्तान हरमनप्रीत कौर और भारत की हॉकी टीम की दिग्गज गोलकीपर सविता पुनिया को दिया गया।
1: और सुश्री लिविया लोबो सरदेसाई 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी है, इनको भी अवार्ड दिया गया। और पार्श्व गायिका अलका याग्निक भी पद्मश्री अवार्ड प्राप्त की।
0: बिल्कुल। और आज का यदि खास बात की जाए तो ऐसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसमें से एक हैं राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त, जिनका जन्म 1883 में हुआ था बनारस में। और उन्होंने कहते हैं ना, महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, स्वतंत्रता आंदोलन को आर्थिक और नैतिक समर्थन भी दिया। 1920 में हिंदी दैनिक आज की स्थापना की और 1921 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना भी की। भारत माता मंदिर का निर्माण कराया और बीएचयू की स्थापना आर्थिक सहयोग दिया और महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र रत्न की उपाधि दी।
1: और वीरांगना क्रम में आज हम अहिल्याबाई होलकर की हम बात करेंगे। तो मालवा साम्राज्य की महान महाराठा जो महारानी थी, 18वीं शताब्दी में एक कुशल शासक और न्यायप्रिय प्रशासक के रूप में प्रसिद्धि हुई और उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर पूरी भारत में अनगिनत मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और जन कल्याणकारी कार्य किए। और चलते चलते सुझाव शिकायत की हम बात करेंगे। कार्यक्रम हमारा गृह लक्ष्मी चल रहा है तो बहनों के विचार भी लेने बहुत जरूरी है, तो पता बता दें।
0: बिल्कुल। और हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 110001। और ईमेल भी कर सकते हैं feedback@gmail.com।
1: और साथ साथ आपको भी बता दें कि हमारा जो अगला कार्यक्रम शाम को होगा ग्राम संसार होगा और लोक रंजनी भी होगा और कृषि जगत भी होगा। लोक रंजनी 5:10 पर होगा 5:30 तक और जो हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम होगा 6:30 से लेकर के 7 बजे तक और 7:05 से लेकर के 7:30 तक आप सुन सकेंगे कृषि जगत कार्यक्रम।
0: तो सुनना ना भूलें।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ बताना चाहेंगे आज के हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पारसर
0: और संयोजक है शिव नंदन लाल।
1: तो बहनों करते हैं राम राम, राम।

0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम ग्रह लक्ष्मी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई।

0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्वकप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India. Mr. Modi exuded pride that India achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. The Prime Minister was pleased to note that everything is indigenous from the design to the manufacturing of these ships. The Prime Minister stated that the DRDO also successfully tested an indigenous long-range land attack cruise missile. He noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies. The Prime Minister also spoke about International Yog Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. This time, diverse yog events were held at over 2,500 locations across the globe. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India topped the medals tally.
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
2: Prime Minister Modi stated that the power of public participation

0: in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: The Prime Minister also spoke about the importance of the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, which provides an insurance cover of 2 lakh rupees to a person's family in the event of an unfortunate death. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Dhabra in Rajgarh district of Madhya Pradesh who resolved to remove plastic waste scattered around the area. Gradually, this effort expanded and the collected plastic began to be converted into eco bricks. Today, these eco bricks are being used to beautify public spaces. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain campaign should not slacken. In some other news, bilateral talks are underway between Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles, Patrick Hamani, in Victoria, the capital city of Seychelles. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Earlier, he was given a guard of honor at the State House with President Hamani. Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Later, he will attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honor. The security situation in West Asia has deteriorated sharply after the fragile US-Iran ceasefire effectively collapsed, with both sides launching fresh military strikes over the past several hours. US said it carried out airstrikes against 10 Iranian military targets near the Strait of Hormuz after accusing Tehran of attacking a commercial oil tanker with a drone. US President Donald Trump warned that further violations could trigger a much broader military response. And Lionel Messi becomes the first to score in 7th consecutive FIFA World Cup match as Argentina beat Jordan 3-1 in his Group J finale today. It means Messi has been scoring at least one goal in each of his last 7 World Cup matches he played. The Jordan goal was the 7th straight match in that scoring streak. Messi came off the bench to score from a free kick in the 80th minute, extending his men's World Cup record to 19 goals. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है दोपहर के 1:10:15। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है एक ही फिल्म से। आज के कार्यक्रम में आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी लेकर आई है बेहद खूबसूरत एक्शन ड्रामा फिल्म करण अर्जुन। 1995 में इस फिल्म ने जो कमाल किया वो तो आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी आज जान जाएंगे और जो जानते हैं उनकी यादें ताजा हो जाएंगी। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन राकेश रोशन ने किया। इस फिल्म में सलमान खान, शाहरुख खान, राखी गुलजार, ममता कुलकर्णी और काजोल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। अमरीश पुरी ने मुख्य खलनायक का किरदार निभाया है, जबकि जॉनी लीवर, अर्जुन, जैक गौर, रणजीत और आसिफ शेख जैसे सहायक भूमिकाओं में नजर आते हैं। फिल्म दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए अपने लालची चाचा के हाथों मारे जाते हैं और फिर बदला पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। भाइयों के इस प्यारे से रिश्ते के बंधन से सजी आज की फिल्म है करण अर्जुन।

के बंधन से सजी ये प्यारी सी डोर के सजी ये कहानी आज की फिल्म करण अर्जुन और इससे सुंदर ये गाना आज का ये बंधन तो प्यार का बंधन।

साथियों ऐसे ही प्यारे से बंधन से बंधा हमारा और आपका रिश्ता इंद्रप्रस्थ चैनल के माध्यम से और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज की फिल्म करण अर्जुन। दोस्तों करण अर्जुन फिल्म 13 जनवरी 1995 को भारत के सिनेमा घरों में जब रिलीज हुई तब उसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इससे भी बड़ी बात इसने 450 मिलियन यानी 20 मिलियन डॉलर की कमाई की उस समय में, जिससे ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक फिल्म के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। इसके साथ ही ये उस दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। तो ऐसी फिल्म का गीत सुनना तो यहाँ बनता है ना।

झगड़ा ही पाते रहेंगे या उससे भी बड़ी खुशखबरी सुनेंगे आज से, आज की फिल्म से जुड़ी और भी दिलचस्प बातों की, क्योंकि आज की फिल्म है ही ऐसी, क्योंकि वो रही है अपने समय की ब्लॉकबस्टर फिल्म। आज की फिल्म करण अर्जुन, जिसे आप सुन रहे हैं अपने मन पसंद चैनल इंद्रप्रस्थ से, और आज की फिल्म लेकर आई है आपकी दोस्त तृप्ति जौहरी। तो आज की फिल्म करण अर्जुन को 41वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में करण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में सलमान खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में राखी सहित 10 नामांकन प्राप्त हुए और 2 पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए भी जीते। तो हमारे किस किस श्रोता को याद आ गए इस फिल्म के चर्चित संवाद, जैसे मेरे बेटे आएंगे, जमीन की छाती फाड़ कर आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, याद आया ना राखी गुलजार का ये डायलॉग। जैसे कौन कौन से डायलॉग्स और सॉन्ग आपको आज की फिल्म करण अर्जुन के पसंद है, हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर ipradiodelhi@gmail.com पर। तब तक यहाँ हम एक गीत तो सुन ही लेते हैं।

0: खैर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो श्रोताओं, यहाँ मैं माफ करना बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि समय समय पर आपको जानकारी देना बिल्कुल जरूरी है। जी हाँ, आपके मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से में, जिसे आप सुनते हैं अपने मनपसंद चैनल इंद्रप्रस्थ से। तो आपका कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज की फिल्म है करण अर्जुन। तो आज की फिल्म की कहानी हम आपको संक्षेप में बता देते हैं, क्योंकि आपकी ईमेल्स आना लगातार शुरू हो गई है, उसके बाद आपकी ईमेल भी लेना जरूरी है कार्यक्रम में। तो आज की फिल्म कुछ ऐसी है कि गरीब दुर्गा यानी राखी अपने दो बेटे सलमान यानी सलमान खान बने हैं, करण और अर्जुन जो जिन्होंने भूमिका निभाई है शाहरुख खान की, के साथ गाँव में रहती है। दोनों के पिता गांव के ठाकुर के बेटे के पुत्र हैं। उनके पिता के रिश्तेदार दुर्जन सिंह, जिसकी भूमिका निभाई है अमरीश पुरी ने, उनके पिता को मार देते हैं। जब उनके दादा गुजर जाते हैं तो दुर्जन सिंह पैतृक संपत्ति में उन्हें हिस्सा लेने से रोकने के लिए अपने सालों यानी नाहर जो अर्जुन की भूमिका निभाते हैं और शमशेर जो जैक गौड़ जिसकी भूमिका निभाते हैं, वो करण और अर्जुन को भी मरवा देता है। दुर्गा को सदमा लगता है और वो काली माँ से अपने बेटों को वापस लाने के लिए कहती है। करण और अर्जुन तभी दोबारा पुनर्जन्म लेते हैं। अर्जुन का विजय के रूप में पुनर्जन्म होता है और वो अमीर लड़की सोनिया काजोल से प्यार करने लगता है। उसके पिता सक्सेना यानी रंजीत दुर्जन सिंह के साथ गैर कानूनी कार्य में लिप्त है और साथ ही उसकी शादी उसके बेटे सूरज यानी आसिफ शेख से तय कर दी जाती है, जबकि करण का पुनर्जन्म अजय के रूप में होता है जो सक्सेना के लिए काम करना शुरू कर देता है। करण और अर्जुन को अभी भी पिछले जन्मों में उनकी मौत के बारे में कुछ सपने आते हैं, दुस्वप्न आते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ कुछ उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई है। सोनिया और सूरज की सगाई की पार्टी में विजय आता है और सूरज पर हमला करता है। अजय को विजय को मारने के लिए भेजा जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है बताऊंगी इस गीत के बाद, क्योंकि काली माँ की कृपा से ही उन दोनों का पुनर्जन्म होता है।
4: शूलम् शुण्डीशिरः शङ्खम् सन्दधति

काली माँ की कृपा से उनका पुनर्जन्म तो होता है। आज की फिल्म करण अर्जुन में फिल्म की कहानी हम आपको बता रहे थे, साथ ही उसमें आगे क्लाइमेक्स पर क्या होता है, तो सक्सेना विजय को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन अजय ने अर्जुन भाग चिल्लाते हुए उसे रोक दिया। ये ऐसा कुछ है जिसे अजय ने अपने पिछले जन्म में विजय से कुछ कहा था। अजय को जेल भेजा जाता है जबकि विजय बच निकलता है। सूरज से शादी करने के लिए सोनिया को जबरन दुर्जन के घर ले जाया जाता है। विजय अपने दोस्त जॉनी लीवर के साथ उसे बचाने जाता है। वहाँ सब उसे अर्जुन कहकर बुलाते हैं। वो दुर्गा से मिलता है और उसे अपनी पहली जिंदगी का सब याद आ जाता है। वो अजय को बचाता है और उसे सब बताता है, लेकिन वो उस कहानी को मानने से इनकार कर देता है। लेकिन जब दुर्जन के साले फिर दुर्गा पर हमला करते हैं, उसे भी सब याद आ जाता है। आखिर में अजय और विजय सब गुंडों को मार देते हैं और अपनी माँ के सामने दुर्जन सिंह का कत्ल कर देते हैं। करण अपनी प्रेमिका बिंदिया यानी ममता कुलकर्णी और अर्जुन सोनिया से विवाह कर लेता है। तो ये थी आज की फिल्म करण अर्जुन की कहानी। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ आज की फिल्म की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप कहानी के साथ साथ आज के गाने भी आपको पसंद आ रहे हैं, ये हम आपकी ईमेल से देख रहे हैं। तो साथ में आप शामिल करते हैं आपकी ईमेल भी। तो आज की सबसे पहली ईमेल आई है भाई, ये है राधे श्याम देवांगन जी जो लिख रहे हैं, इंदिरा नगर भवरपुर से। राधे श्याम देवांगन जी, चंपा देवांगन, आपने सिर्फ इतना ही लिखा है कि हमें एक ही फिल्म के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, आपको ये भी बताना था कि आज आप कौन सी फिल्म सुन रहे हैं तो हमें और अच्छा लगता। तो अगली जो हम ईमेल शामिल करने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम में, वो ईमेल हमारी आई है, वो आई है हमारी गुरमीत सिंह जी की। ये लिखते हैं खुशनुमा नमस्ते। तो भाई आपको भी हमारी खुशनुमा नमस्ते। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से आप लिखने वाले हैं हमारे साथ ही। यह अगली ईमेल है पता पलारी छत्तीसगढ़ से, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूना राम देवांगन, कृष्ण देवांगन, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है एक ही फिल्म से। तो धन्यवाद साथी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और अगले जो हमारे साथी हैं, गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला जिला फिरोजपुर पंजाब से, स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज और पुतरे गुरनेर सिंह, माफ कीजिएगा, और शुभदीप सिंह। फिल्म कभी कभी के गीत के बोल तो माफ कीजिएगा, ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम नहीं है। आज हम एक ही फिल्म से में जो फिल्म लेते हैं उसी के गीत सुनवाते हैं। तो ये आप शाम की फिल्म में भेज सकते हैं, शाम के कार्यक्रम में भेज सकते हैं। प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता जी हार्दिक अभिनंदन, ये हमारे साथी हैं अगले एक ही फिल्म से की सुनील पाठक जी। तो ये सुनील पाठक जी स्थान है अनारकली बाजार जगराव पंजाब से, के तहत फिल्म करण अर्जुन के गीत और कहानी सुन रहे हैं।

0: आप अपने जमाने की खूबसूरत फिल्म थी। सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा और दीपिका मल्होत्रा जी, तो धन्यवाद साथी। अगले साथी हैं दिगंबर जैन जी, दिगंबर दर्शन गौड़, माफ कीजिएगा। नमस्कार, शुभ दोपहर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाने, जानकारी और रोचक किस्से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उत्तम और बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तो आपका इस तरह का जो हमें फीडबैक मिला, इसके लिए भी धन्यवाद। तो अगली जो ईमेल आई है, ये आई है वीर विरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला बेन भावसार, और ये लिखते हैं प्रिय आरजे जी नमस्कार दीदी, फिल्म करण अर्जुन है, लाजवाब प्रस्तुति, लाजवाब गीत, धन्यवाद, आपको पसंद आया कार्यक्रम। और ये है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बाटा, नीलम बाटा, निहारिका और वंश बाटा जी। इसके साथ ही हैं फिल्म करण अर्जुन के साथ जुड़े हुए हमारे साथी हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा जी, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीप प्रेमजिम गुप्ता, और समडील वहां से हमारे साथी जुड़े हैं, समडील नावा पारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक, श्रीमती अंकुर राघव। नमस्कार दीप्ति जी, तो माफ कीजिएगा साथी, मेरा नाम दीप्ति जी नहीं तृप्ति है, तृप्ति जौहरी है। एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम फिल्म करण अर्जुन के गीत सुन रहे हैं, शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए आप हमारे बधाई अवश्य स्वीकार करें। तो हमने स्वीकार कर लिया। आप हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, धन्यवाद साथी। और अगली जो ईमेल है, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसवी, सीता और गीता, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें। तो भाई सुनवा दिए हमने अपनी पसंद के, क्या इस फिल्म के लगभग सभी गीत सुनवा दिए। वडिंग खेड़ा से पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और इसी के साथ हम एक और मेल शामिल कर लेते हैं क्योंकि अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। नमस्कार मैडम, आज की फिल्म करण अर्जुन पुनर्जन पर आ रहे, इसके गीत लाजवाब हैं। सुरेश यादव, अनिता यादव और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसके साथ ही हमें और भी जो ईमेल आई हैं, धर्मेंद्र छीपा, क्योंकि समय नहीं है मैं जल्दी जल्दी नाम ले लेती हूँ, तो दर्शन मुखी, दिगंबर गौड़, धर्मेंद्र छीपा, क्योंकि आप लोगों ने ईमेल रिपीट की है, स्वर्ण सिंह, सुधाकर यादव, संजय साहू और फरगुन यादव, संतोष मक्कार। तो इन्हीं के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पर समाप्त होता है। की फिल्म से ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदे मन की बात प्रोग्राम विच भारत के मेड इन इंडिया C-295 जहाज की पहली उड़ान पूरी होने नाल हवाबाजी खेत्र विच वड्डी सफलता हासिल करन दे मान प्रकट कीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते सेशल्स राष्ट्रपति बैठे पैमाने विचकार सेशल्स विच दुबली गलबात जारी है। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण नू साकार करने में पिंडा की केंद्रीय भूमिका से जोर दिता है। सेहत के प्रभाव भलाई मंत्रालय ने मेडिकल उपकरण नेम 2017 में 14 की तजवीज रखी है। ते औरतों के ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप विच लंदन से भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया नाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत ने जून विच हवाबाजी खेतर विच वड्डी सफलता हासिल की थी, जिस विच मेड इन इंडिया C-295 जहाज ने अपने पहली उड़ान पूरी की थी। श्री मोदी ने मान प्रकट किया कि भारत ने इस महीने देश की सुरक्षा ते स्वैरपरता नाल जुड़ी सफलता हासिल की थी। आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम विच राष्ट्र नु संबोधन करते हुए उन्होंने दस्या कि भारत विच अजिहे 40 जहाज बनाए जा रहे ने।
2: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295

0: अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री हाल ही विच कोलकाता विच एक समागम में शामिल हुए जिथे INS सोनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे नूं भारतीय समुद्री फौज के बेड़े में शामिल किया गया सी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे खुशी हुई है कि इन जहाजों के डिजाइन तो लेके निर्माण तक सब कुछ स्वदेशी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में DRDO ने एक स्वदेशी लंबी दूरी वाली जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल का सफलता नाल परीक्षण भी किया। इस नूं DRDO प्रयोगशालावां ते भारतीय समुद्री भाईवाला वालों सांझे तौर पर विकसित किया गया सी। प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बारे भी गल की जिस विच पूरी दुनिया भारत के यत्नां नाल शामिल होने दिखाई दी थी। उन्होंने अहमदाबाद विच हुई विश्व योगासन चैंपियनशिप का जिक्र किया जिथे भारत ने समागम विच कुल 114 तमगे जीते जिस विच सोने के 102 तमगे शामिल ने।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में जनतक हिस्सेदारी की शक्ति भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में मौजूदा युद्ध वर्ग की स्थिति के मद्देनजर देशवासियों को कुछ मुक्तियों से अपील करने के बाद जनतक हिस्सेदारी दोबारा दिखाई दी थी।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था उस समय के लिए सोना खरीदने से बचे, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे थे।
1: प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की महत्ता बारे भी गल की थी। उन्होंने कहा कि योजना किसी व्यक्ति के परिवार को उसकी बदकिस्मती नाल मौत होने से 2 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने लोगों को अपील की थी कि वो गणेश उत्सव दौरान अपने आले दुआले गणपति बप्पा दी मूर्तियां कुम्हार ते स्थानक कलाकारों वालों हाथ नाल बनाईयां मूर्तियां लैन। उन्होंने मूर्तिकारों को भी मिट्टी दी मूर्तियां नूं तरजीह देने की अपील की थी। श्री मोदी ने कहा कि मिट्टी दी मूर्तियां पानी विच आसानी नाल घुल जांदियां ने जिस नाल दरियावां तलाब ते चगिरदे दी रक्षा हुंदी है। अंतरिक्ष पानी दी संभाल बारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मीह दे पानी दी हर बूंद नूं बचाया जाना चाहीदा है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते सेशल्स दी राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी विचकार वड्डी गल्लबात जारी है। दोवे नेता भारत सेशल्स संबंधा दे सारे पहलुआं दा जायजा लै रहे ने ते खेतरी ते अंतरराष्ट्रीय मुद्दियां ते चर्चा कर रहे ने। इस तो पहला राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी की मौजूदगी विच स्टेट हाउस विखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री और सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली नूं संबोधित करेंगे अते भारतीय भाईचारे के मैंबरां नाल मुलाकात करेंगे। इस तो बाद वो मुख मेहमान वजो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस से गोल्डन जुबली समारोह में शामिल होंगे। भारतीय हथियारबंद फौजां की टुकड़ी से 2 भारतीय समुद्री फौज से जंगी जहाज के जश्न में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के सरकारी दौरे से सेशल्स में ने। ये खबरें तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो साडा XNLA @AIR जलंधर। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अज विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण नूं साकार करन विच पिंडां दी केंद्री भूमिका नूं उजागर किया। नवी दिल्ली विच राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना तहत राज्यां दे योगदान समेत 151,000 करोड़ रुपए तो वध दी व्यवस्था की गई है ताकि देहाती विकास नूं तेज किया जा सके ते नाल ही देहाती मजदूरां लई उपजीविका की सुरक्षा नूं यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायतों नूं जमीनी पद्धर ते शासन नूं होर मजबूत करन अते देहाती भाईचारिआं नूं भी मजबूत बनाउण लई काफी माली सहायता मिलती रहेगी। उन्होंने इस गल ते जोर दिता कि देहाती उपजीविका मिशन तहत 10 करोड़ तो वध औरतां नूं स्वय सहायता समूहां नाल जोड़िया गया जिस नाल औरतां दी अगवाई वाले विकास अते देहाती उद्यमशीलता नूं मजबूत बनाया जा सके। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वह कैलाश मानस

विक्टोरिया में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के सदर पैट्रिक हरमेनी के साथ दो तरफा बातचीत की है ताकि बाहमी इश्तराक का जायजा लिया जा सके। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने इलाकाई और बाहमी मफाद के बैन अल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।

0: land, from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS दुल्हागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandere, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.
0: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
1: हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है. ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था. फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ. हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई. आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है. इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे.
0: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
1: Nalanda Vishwavidyalaya ne shastrarth ki hamari prachin parampara ko phir se jeevan kiya hai. Dusron ke vicharon ko dhairya se sunne aur samajhne ki seekh bhi is shastrarth ki prakriya se milti hai. मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया.
0: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic which has an Indian population of around 100.
1: Caribbean Sagar mein Dominican Republic naam ka ek desh hai. Wahan bhartiyon ki sankhya kareeb 100

0: the country. On to sports now. Kidambi Srikanth has advanced to the men's singles final of the U.S. Open Badminton Championships at the Titan Gym in California today. Srikanth defeated Japan's Yudai Okimoto in a hard-fought semi-final. He will next face Wu Li Yang of Chinese Taipei in the final. In ICC Women's T20 World Cup, India will take on Australia in the final Group A match at Lord's Cricket Ground in London today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. In men's cricket, India will take on host Ireland in the second and final T20 International of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup and he leads the Golden Boot race by 2 goals. Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished their Group J campaign with 3 wins from 3. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies with focus on indigenous defense production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft made in India. In his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorated sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्यू

0: मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की, जिसने लगभग 3500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
0: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख

0: रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किकू पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया।

अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सामीन अभी तक आप आकाशवाणी दिल्ली से नेशनल न्यूज सर्विस 24x7 के नशियात समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। मीडियम वेव का जो आकाशवाणी करगिल कसाता शीना प्रोग्राम पुनर प्रोग्राम पर चुखान पर मुख्तार अहमद प्रोग्राम प्रोड्यूसर पर गुलजार हुसैन।

0: जारुगा सयारे
1: रोहिटो रठनियो कार्यो या सनोट दश दो के कार्यो हर साल ऐ सालो 27 सितंबरो छक मरीजो या रोगीटो रठनियो देश मरे भोजनस मरीजो रठनी सनी मिष्ट सिहत सनोरजे फिकर घन तो या सनी देखभाल तो के कार्यो जोक जोक उसूल आवाजी आने बारे जगह अनुदेश जा दशमान से असुर दष्टे बुझा रोगीटो रचनी सनी सिहतो देखभाल तो सिस जा अमल थरेस तो रोगीटो लेल थोगी कार या रोगट्यार लेल थोगी कार सनर नुकसान देन चीजे जोक जोखने सुन मुशो थोगी कार्यो और रोगीटो रचनी मिश्रित होगी कार्यो अनुदेश बेसु मने भोजनस के मने भोजनस WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मिष्टिगा सेहतमन छाल बलो जाल छक सनो कनाथ बेसु सनी सनी बेसु रशनी धुन तोने इदारे आलमी सेहत से अनुसालो मौजू मिष्टी थे छाल बलोरे या माँ कना बुच्चे और सनी देखभाल कनत थोन और सनी सिहातो कने थे वेसु रचनी थोन अनि बारजा अनु देज 27 सितंबर ओचक WHO से रजी किए सोट लेलबो के आवाजी जारुगा सजारे दुनिया तमाजा देजो अशल गदई सिरपोए मुलाए चो जा या लेबर रूम में जा ने फेशु मुठोरे या लेबर रूम में जा फोई अनि बुजुहात जा अनि दुनिया ते जो मिरी बुजने कि सनोरे मिष्टी इंतजामात बेनश शासास का सचल नावे जाले छाल बाल मासू भी मिरी जा तो अनिराजा कि 2,00,000 छाल बाल मुर्दा जन थी यानी डेरो जब मिरी बे आजो आजी आज ही डेरो जानी बाल छाल के मिरी जा अन्नो बारेगा अनुदेश जे छक दशमाने से रजी बुझा तो असोते लेल हनी जारे का सजारे आज जो दो काल पतो गले तो दो सास का कुनी दो सास का बी या दो सास का बी का एको छक ओ कला जा अनिसाल हो जा एक अताओ खाच रोग एक दुनिया ते मजा आलो कैसे बस COVID-19 थुनस या COVID-19 थुनस सदो ई फतो इंसान ई रोग ओबारा जा कचाक एक डाव थे कहू कचाक एक चमाट थे कहू कि रोग से कचाक मुश्किलात पैदा थे ना कचाक अवश्य पैदा थे ना तो अनुई COVID-19 का अनिसी वबा हुई नुगा लाओ एक बड़ो मसलाक बिलो एक घुटुम मसलाक बिलो के सदो फतो सिरपो एचे महफूज छोड़ो निकारियो सुनो रचो निकारियो या जुग जालो भलाया कनाथ निगरानी थोन कनाथ ख्याल छोरोन अनि मुहिम अनि छक शुरू बिली अनु इदारा से मिश

0: anukalamis nala ajuki shina punar programo ken chupafalo sa makhoro sa mezban mukhtar zahid bargami se sujo izin lukemus punaro mishtoganuki somusho okay bes jamartun sadur tang asur de ijazat sostumi khayal chore baja khuda yaar dabon rachalo
1: दसन सपायते शिना प्रोग्राम ने ने पिन पुनर मीडिया में का दिवा आकाशवाणी करगिलिन मीडिया में 1584 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामीन से पहले के 3 बजे हुआ चाहते हैं। सामीन अब से लेकर शाम के 5 बजे तक हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।

बजकर 30 मिनट पर यह बाल मजीद का तहरीर करदा ड्रामा एक वक्त की रोटी नशर किया जाएगा। शाम 4 बजे सुनिएगा कुछ मिले जुले फिल्मी नगमे और 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी।

आकाशवाणी के उर्दू सर्विस से दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक नशर होने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा सुनिए। अब से कुछ ही देर में यानी 3:05 पर खबरें सुनिएगा। 3:15 पर मेरी पसंद प्रोग्राम पेश किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 होने को हैं, अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुद्र से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। वजीर आजम ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज C-295 की पहली परवाज मुकम्मल होने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने, नीज कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तई तशक्कुर का इजहार किया। भारत और सेशेल्स ने विक्टोरिया में वफूद की सतह की बातचीत के बाद सेहत, जरात, खजाने और खला समेत मुख्तलिफ शोबों में समझौतों पर दस्तखत किए हैं। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है। अमरीका और ईरान की अफवाज ने एक दूसरे के खिलाफ फिर से हमले किए हैं। और खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में आज लंदन में ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि भारत में ही बनाए गए C-295 तर्ज के हवाई जहाज की पहली परवाज मुकम्मल होने के साथ ही भारत ने जून के महीने में एविएशन के शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम ने बताया कि इस तरह के 40 हवाई जहाज भारत में ही तैयार किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारत ने इस माह मुल्क की सिक्योरिटी और खुद किफालत से वाबस्ता कामयाबी हासिल की है। वजीर आजम ने हाल ही में कोलकाता में बहरिया की एक तकरीब में शिरकत की थी, जिसमें INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS एग्रे को भारतीय बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया। वजीर आजम ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि इन बहरी जहाजों के डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज अंदरून मुल्क तैयार की गई है। वजीर आजम ने कहा कि जून के महीने में ही दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने भी मुल्क में ही तैयार किए गए तवील दूरी के जमीनी हमले से मुतालिक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। इसे DRDO की तजर्बागाहों और भारतीय सनत के साझेदारों ने मिलकर तैयार किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत समुन्दर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। वजीर आजम ने योग के बैन अल-अक़वामी दिन का भी तस्करा किया, जिसमें पूरी दुनिया के लोगों ने भारत की कोशिशों के साथ मिलकर कदम बढ़ाया। जनाब मोदी ने अहमदाबाद में मुनक़िदा आलमी योग आसन चैंपियनशिप का भी जिक्र किया, जहां भारत ने सोने के 102 तमगों समेत मजमूई तौर पर 114 तमगे जीते। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की तामीर में अवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा असासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के तनासुर में कुछ निकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफर पर ना जाएं।

0: सामना करेगा। ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय खवातीन की टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है। भारतीय टीम ने अपने 4 मैचों में से 3 में कामयाबी हासिल की है। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में डीआर कांगो ने पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में पहुंचकर तारीख रकम कर दी। आज सुबह एटलांटा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप के एक मैच में डीआर कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। आज सुबह ग्रुप के एक और मैच में पुर्तगाल और कोलंबिया के दरमियान फ्लोरिडा के मियामी में स्टेडियम में खेला गया मैच ड्रॉ रहा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अंदरूनी मुल्क दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुद्र से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। वजीर अजम ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज C-295 की पहली परवाज मुकम्मल होने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने, निज कार पुलिंग को फरोख देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तहीं तशक्कुर का इजहार किया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस। और लीजिए सामाइन, अब सुनिए प्रोग्राम मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम में आज आपके साथ हूं मैं नगमा आदाबर से। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं केदारनाथ फिल्म के इस नगमे से। आवाजें हैं निकिता गांधी और अरिजीत सिंह की। नगमा निगार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और मौसीकार हैं अमित त्रिवेदी।

की आवाज में ये नगमा था फिल्म सुई धागा का। नगमे के बोल लिखे थे वरुण ग्रोवर ने और मौसीकी तरतीब दी थी अन्नू मलिक ने। और लीजिए अब सुनिए इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, श्रेया घोषाल की आवाज में लापता लेडीज फिल्म का नगमा। नगमा निगार हैं स्वानंद किरकिरे और मौसीकार राम संपत।

समय अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। और लीजिए अब सुनिए इकबाल मजीद का तहरीर करदा ड्रामा एक वक्त की रोटी।

साहिबान, सुनाता हूँ आपको एक दास्तान कि पेशा मेरा दास्ताने सुनाना है। आंखों की देखी कहता नहीं, कानों की सुनी कहता हूँ कि बरसा बरस पहले एक राजा का राज ऐसा भी था कि जहां की रियाया दिन रात पैसे के पीछे भागती थी, और पैसा अगर मिल भी जाता तो उसे कम समझकर और भी ज्यादा पाने के अच्छे और बुरे सारे जतन कर डालती। कहते हैं कि पैसे की हवस का यह हाल देखकर एक हवाओं की देवी जो अपनी हवा के एक झोंके से कौमों तक की किस्मत बदल देती थी, उस मुल्क के बाशिंदों के पास गई ताकि पैसे के पीछे भागने वाली उस खिलकत की परेशानियों को दूर कर सके। कहते हैं कि हवा की देवी की आमद पर उस मुल्क के लीडरों ने देवी की बड़ी आओ भगत की और उसके एजाज में एक शानदार जलसा भी किया गया। ऐ मेरे प्यारे सामईन, अपनी तसव्वुर की आंखें कुछ देर को बंद कीजिए और आइए मेरे साथ उस जलसे में चलिए जहां हवा की देवी का खैर मकदम किया जा रहा है।

ऐ मेरे प्यारे जमीन के बाशिंदों, मैं आपके मुल्क में पहली बार आई हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि आप लोगों की जिंदगी में पैसे की बड़ी अहमियत है, इसलिए आप में से हर एक दिन रात पैसे के पीछे भागता है, उसे जैसे तैसे हासिल भी करता है, मगर वो पैसा उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करता।

0: पाता। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? तो ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आपके मुल्क के बड़े दिमाग वालों से मेरी बातचीत हो चुकी है। मुझे बताया गया है कि अगर आप सब साहबान को रोजाना 2 लाख रुपए की आमदनी हो जाया करे तो आप लोगों की जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यहाँ जो बड़े मियाँ पास बैठे हैं, जरा आप बताइए, क्या आपको 2 लाख रुपए रोज की आमदनी मंजूर है?
1: जी क्या कहा, 2 लाख रुपए रोज?
0: जी हाँ, हर सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपके तकिए के नीचे से 2 लाख रुपए निकला करेंगे।
1: 2 लाख? देवी जी, व्हाट आर यू सेइंग? डू यू नो?
0: आई मीन व्हाट आई से।
1: 2 लाख रुपए रोज?
2: अरे बड़े मियाँ, अरे ये तो बेहोश हो गए।
3: अरे मजमे में कोई डॉक्टर है क्या?
4: ठहरिए, मैं आ रहा हूँ।
2: आइए डॉक्टर साहब,
4: आप लोग पीछे हटिए, हवा आने दीजिए जरा।
2: अरे अरे इन बड़े मियाँ की तो आंखें ही पलट गई। डॉक्टर साहब जरा देखिए तो।
4: देखता हूँ, आप पीछे हटें। सॉरी, इनका तो हार्ट फेल हो गया, शायद इतनी बड़ी खुशी का शौक सह नहीं सके। देवी जी, ये बड़े मियाँ तो गए ऊपर।
0: ओह, मुझे दुख है कि इस मौत का कारण मैं बनी। ठीक है, तो मैं 2 लाख की रकम कम करके अब 2000 किए दे रही हूँ। शायद 2 लाख रोज आपके लिए बहुत ज्यादा है।
5: अरे 2 लाख से 2000? इतना घाटा? अरे अरे मेरा दिल।
6: देवी जी ये लीजिए, ये सेठ जी इतने बड़े घाटे के ख्याल से ही चल बसे।
7: नहीं नहीं, कम मत कीजिए, बिल्कुल कम मत कीजिए।
5: अरे अरे आप तो ये बताइए कि क्या 3 लाख रुपए रोज नहीं मिल सकते?
0: बिल्कुल मिल सकते हैं। आपके ये लीडर साहब मेरे पास बैठे हैं, ये कहें तो मैं 3 लाख रोज कर दूंगी।
8: ठहरिए देवी जी, दोस्तों देखिए, पैसे और दौलत की यूं तो कोई हद नहीं है, पर हमने तय किया है कि 2 लाख रुपए रोज सबको मिला करें। और साथियों, इसमें बच्चा, जवान, औरत, मर्द सब शामिल हैं। हर एक को उसके तकिए के नीचे से 2 लाख रुपए रोज मिलेंगे। ये वादा देवी जी ने हमसे कर लिया है।
0: दोस्तों, मुझे दुख है कि अभी अभी इस जलसे में 2 आदमी अल्लाह को प्यारे हो गए। एक इस खुशी में कि उसे अब 2 लाख रोज मिलेंगे, और दूसरे इस सदमे में कि 2 लाख रोज की आमदनी 2000 में बदल गई। इसलिए मुझे डर है कि जिस दिन वाकई 2 लाख रोज आपके तकिए से निकलना शुरू हो जाएंगे, उस दिन बहुत से लोग हाइपरटेंशन का शिकार होकर पटापट मरेंगे। उसके लिए मुझे दोष मत दीजिएगा।
8: अरे देवी जी, जिसकी आ जाएगी उसे कौन रोक सकेगा है? और मौत के लिए तो कोई ना कोई बहाना होता ही है।
0: ठीक है, तो कल से आप सबके तकिए के नीचे से 2 लाख रुपए रोज निकलना शुरू हो जाएंगे। मगर एक शर्त के साथ।
6: शर्त? क्या शर्त?
4: कैसी शर्त?
0: वो शर्त मैंने आपके लीडर यानी नेता साहब को बता दी है, वही आपको बताएंगे।
8: साथियों, हवा की देवी जी ने जो शर्त बताई है उस पर सरकार ने गौर करने के लिए काबीना की एक जैली कमेटी बनाई थी। हमें खुशी है कि कमेटी ने उस शर्त को मान लेने की सिफारिश की है।
2: मगर वो शर्त क्या है?
8: बताता हूँ वो शर्त।
6: ठहरिए,
8: सुनिए भाई, वो शर्त ये है कि।
6: ठहरिए, ये शर्त कुछ ऐसी वैसी तो नहीं है, क्योंकि मैं भी दिल का कमजोर हूँ।
8: जी नहीं, उस शर्त के तमाम पहलुओं पर मुल्क के आला दिमागों ने पहले ही गौर कर लिया है।
6: अच्छा, तो बताइए जरा वो शर्त।
8: वो शर्त ये है कि
4: देखिए, अगर सरकार उस पर कोई लंबा चौड़ा वेल्थ टैक्स लगा रही हो तो उसे हम नहीं मानेंगे।
2: नहीं मानेंगे।

0: देखिए देखिए, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब खामोश रहें। ये आपने कैसे समझ लिया कि सरकार उस पर टैक्स लगा रही है?
1: अजीब, वो टैक्स लगाने के अलावा अब तक करती ही क्या रही है?
0: आपने शर्त सुनी नहीं और नारेबाजी करने लगे। अरे भाई, आपको 2 लाख रुपए रोज मिलने जा रहे हैं, बच्चा बच्चा करोड़पति होने जा रहा है। अब तो आप लोग नारेबाजी जैसी छिछोरी हरकतें छोड़ दीजिए।
1: शर्त बताइए, शर्त तो बताइए।
2: मैं दोहराए देती हूँ वो शर्त।
1: जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
2: जो कोई भी अगर एक बार भी भूले से भी हंसना तो दूर रहा, बस मुस्कुरा भर दिया, तो उसके तकिए के नीचे से नोट निकलना हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये है वो शर्त।
3: मतलब हंसना मुस्कुराना बंद?
2: नहीं नहीं नहीं, बंद तो नहीं है। आप चाहें तो मुस्कुराएं, हंसे, 2 लाख मिलना बंद हो जाएंगे।
4: ऐसी बुरी तो नहीं
5: है। मेरे ख्याल में भी शर्त काफी माकूल है।
0: देखिए देखिए साहिबान, सरकार ने इस मामले पर पहले ही सोच विचार कर लिया है। ये देखा गया है कि हम अपने कीमती कौमी वक्त के एक बड़े हिस्से को फालतू ही बेकार के हंसी मजाक में गुजार दिया करते हैं। इस शर्त के लग जाने से आमदनी के साथ साथ हमारे अंदर संजीदगी और बुर्दबारी भी पैदा होगी।
6: शर्त अच्छी है, हम लड़कियों को सड़क पर खड़े उबाश लड़कों के गंदे तहकहों से भी छुट्टी मिल जाएगी।
5: अजी, दफ्तरों में क्या कम धोल धप्पा होता है। अच्छी शर्त है, हमें मंजूर है भाई।
4: मंजूर है।
7: देखिए, आप लोग जल्दबाजी से काम नहीं लें, जरा और सोच लें। अरे भाई, डॉक्टरों का कहना है कि हंसी और कहा इंसान के लिए टॉनिक की तरह काम करता है, और सेहतमंद रहने के लिए इस टॉनिक की बहुत सख्त जरूरत होती है।
0: मोहतरमा, परेशान न हो, सरकार पहले ही नेशनल काउंसिल ऑफ हेल्थ से इस मामले में मशवरा कर चुकी है।
7: उसका क्या कहना है?
0: उसने कहा है कि वो हंसी का मुतबादिल टॉनिक तैयार कर लेगी। अच्छा। जिसका इस्तेमाल उन कमियों को पूरा कर देगा।
1: अरे साहब, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? शर्त मंजूर है हमें।
2: ठीक है, तो शर्त याद रखिएगा, जो भी मुस्कुराया वो गया। अच्छा, तो अब मैं आपके मुल्क से जा रही हूँ। बहुत खास जरूरत पर ही मुझे आपकी सरकार बुला सकेगी, वरना नहीं।

0: इस तरह ऐ मेरे प्यारे सामईन, हवा की वो देवी कभी न मुस्कुराने की शर्त लगाकर चली गई। उसके जाने के बाद रात गुजरी, सवेरा हुआ तो खुदा का करना क्या होता है कि जो भी सोकर उठता है अपने तकिए के नीचे से 2 लाख रुपए पाता है। लोग देवी को दुआ देते थे और अपनी तिजोरियां भरते थे। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुल्क का हर शहरी करोड़पति हो गया। मगर कहते हैं कि एक तरफ दौलत की रेल बेल थी तो दूसरी तरफ उसी मुल्क में कुछ और ही हाल था। चलिए जरा देर को उस मुल्क के एक पुलिस स्टेशन पर लिए चलता हूं।
1: दोहाइए थानेदार साहब, दोहाइए थानेदार साहब।
2: क्या बात है भाई, क्यों चीख रही है?
1: अरे थानेदार साहब, मेरी सास ने मुझे कंगाल कर दिया।
2: क्या किया तेरी सास ने?
1: मुझे दिवालिया कर दिया हुजूर।
2: दिवालिया? वो कैसे?
1: हुजूर, वो मुझसे रोज लड़ा करती थी, मैंने भी एक दिन उसे गालियां दे दी।
2: अच्छा तो?
1: कल रात को उसने मुझे बड़े प्यार से अपने पास लिटा लिया।
2: किसने? सास ने?
1: हाँ थानेदार साहब, अपने पास लिटा कर फुसलाने वाले बातें करती रही, फिर मुझे पकड़ कर मेरे पेट में खूब गुदगुदेगी, खूब गुदगुदेगी।
2: तो तुमको हंसी आ गई होगी?
1: हुजूर, मैं खिलखिला कर हंस पड़ी।
2: और आज सवेरे तुम्हारे तकिए के नीचे से पैसे नहीं निकले होंगे।
1: ओए, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई हुजूर।
2: अरे भाई, रोजाना सैकड़ों केस हो रहे हैं ऐसे, जिससे दुश्मनी हो जाती है उसे पकड़

0: क्या बातों बातों में कोई ऐसा चुटकुला सुना देते हैं कि आदमी को हंसी आ जाए।
1: पर सरकार ने कानून जो बनाया है कि अगर कोई किसी को जबरदस्ती हंसाएगा तो उसको भी हंसा कर सजा दी जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी सास को भी हंसा हो।
0: अरे ये काम मेरा नहीं है, अदालत का है।
1: तो अदालत से कहो ना मेरी सास को हंसाए।
0: अरे अदालतें खुद परेशान है। जब मुल्ज़िम ये देखता है कि जज उसको सजा देने वाला है तो कोई ऐसी हरकत कर देता है कि जज को हंसी आ जाए। तीन चार जज हंस चुके हैं अब तक, कंगाल हो गए बेचारे, इसलिए मारे सदमे के छुट्टी लिए पड़े हैं और मुकदमे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं।
1: बर्बाद हो गए।
0: अच्छा ठीक है, तुम भी रिपोर्ट लिखा दो और जाओ।

0: मैं आपको लिए चलता हूँ एक आलीशान होटल के काउंटर पर, जहाँ हसीनो जमील महारू अदा के साथ बैठी रिसेप्शनिस्ट के फराइज अंजाम दे रही है। शायद कोई परदेसी उसको मुखातिब कर रहा है।
1: हाय
2: हाय, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
1: आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं।
2: स्मार्ट नहीं लगती तो ये साले नौकरी देते मुझे?
1: आपकी आवाज बहुत अच्छी है।
2: तारीफ का शुक्रिया।
1: आपके होटल में मुझे बहुत आराम मिला।
2: हमें फिर खिदमत का मौका दीजिएगा।
1: मैडम कैसे बोल रही हैं आप, यही बात जरा नरमी से नहीं कह सकती?
2: नरमी से बोलने में मुस्कुराने का डर रहता है, इसलिए अपना रास्ता नापो।
0: देखा आपने, अब जरा होटल के रेस्टोरेंट में आइए। वो देखिए, एक कोने की मेज पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं। ये प्यार करते हैं एक दूसरे से।
3: सुनो डियर।
4: हाँ डियर।
3: क्या तुम उसे बहुत प्यार करते हो? तुम मेरी खातिर कुछ भी कर सकते हो?
4: हाँ कुछ भी कर सकता हूँ।
3: मैं नहीं जानती मुस्कुराहट कैसी होती है, क्या तुम मुझे मुस्कुराहट दिखा सकते हो? एक बार, बस एक बार मेरे लिए मुस्कुरा सकते हो?
4: ये तुम क्या कह रही हो, मुस्कुराने का अंजाम तो तुम जानती ही हो।
3: जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती, देख लिया तुम्हारा प्यार।
4: अरे भाड़ में गया प्यार, एक बार मुस्कुराऊं और जिंदगी भर डंडे बजाऊं?
3: क्या तुम्हें मुझे मुस्कुराते हुए देखने का कभी जी नहीं जाता?
4: चुप रहो, फालतू बातें मत करो।
3: नहीं चुप रहूंगी मैं, मुस्कुराऊंगी मैं, हंसूंगी, कहकहे लगाऊंगी।
4: पागल हो गई हो क्या?
3: मैं बिल्कुल होश में हूँ, नहीं हंसूंगी तो पागल हो जाऊंगी। बहुत दम घुट रहा है मेरा, देखो मैं हंसती हूँ। तुम भी हंसो ना।
4: ओ गॉड, ओ गॉड, अच्छा हुआ तू शादी से पहले ही हंस ली, नहीं तो एक मुफलिस औरत मेरे पल्ले पड़ती।
0: और ये है सरकारी महकमे इत्तलात का सूबाई दफ्तर, जहां प्रेस के रिपोर्टर्स की भीड़ लगी है।
5: डायरेक्टर साहब, हमें बताइए कि हंसने और मुस्कुराने के बंद हो जाने से सरकार को कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं?
6: जी एक परेशानी हो तो बताऊं।
5: जैसे?
6: अरे भाई हमारी हवाई सर्विस गैर मुल्कियों में नापसंदीदा करार दे दी गई है।
0: क्यों साहब?
6: भाई इसलिए कि हमारी एयर होस्टेसेस टर्राकर बात करती हैं, ऐसा चेहरा बनाकर मुसाफिरों को नमस्ते करती हैं जैसे आखिरी सलाम कर रही हूँ।
5: अरे अच्छा, सुना है ऐसे लोगों की तादाद आए दिन बढ़ती जा रही है जो गलती से मुस्कुरा दिए और 2 लाख रुपए रोज की आमदनी से महरूम हो गए।
6: जी हाँ, और अब उनकी जमात चाहती है कि और लोग भी उन्हीं की तरह हो जाएं।
0: ये आप किस बिना पर कह रहे हैं?
6: भाई वो लोग खुलेआम हास्य कवि सम्मेलन और मजाया मुशायरे कराते हैं।
5: अच्छा, तो ये मजाया शायरों को अपनी आमदनी खोने का डर नहीं लगता क्या? सुनाते सुनाते अगर खुद उन्हें कहीं हंसी आ गई तो?
6: अजी मजाया शायर शायरी सुनाते वक्त खुद कहाँ हंसता है भला?
5: हाँ, तो
6: जितनी रोनी सूरत बनाकर कलाम पढ़ता है उतनी ही दूसरों को हंसी आती है।
5: तो ए, शायर चिल्लाएंगे नहीं अगर मुशायरे बंद कर दिए गए तो?
6: हाँ जी हाँ, वो कहते हैं कि हम कलाम सुनाना बंद कर देते हैं तो पेट फूलता है और डकारें बहुत आती हैं।
0: सुना है ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट क्लास सबसे ज्यादा दहशतजदा है, हरदम मुस्कुराहट के खौफ से सहम

0: में रहता है।
1: हाँ जी हाँ, ऐसा था पर अब वो बात नहीं है।
2: क्यों
1: भाई, अब तो बहुत से योगा सेंटर्स खुल गए हैं जहाँ जबड़ों की ऐसी एक्सरसाइज कराई जाती है
2: जी?
1: कि आदमी कोशिश करने पर भी मुस्कुरा नहीं सकता।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सबसे ज्यादा नुकसान किस तबके को हो रहा है?
1: जानना चाहते हैं आप?
2: बिल्कुल।
1: तो लीजिए, ये एक माँ की कहानी का कैसेट है, इसे सुन लीजिए।
3: कैसेट माँ की कहानी का?
1: जी हाँ, माँ की कहानी का। ये कैसेट बाजार में नहीं मिलेगा, पाबंदी है इसके बजाने पर। सुनिए आप लोग।
2: सुनाइए सुनाइए।
4: डॉक्टर साहब, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया। छोटे छोटे तीन बच्चे थे मेरे। मुझे हरदम ये डर लगा रहता था कि वो कहीं भूले से हंस ना दें। उन्हें अलग अलग बक्सों में बंद करके रखती थी मैं। कभी प्यार से बात तक नहीं की उनसे। उनके बदन पर घाव लगाकर दिन में दो एक बार नमक छिड़क देती थी कि उसकी तकलीफ से वो तड़पते रहे और उन्हें हंसने का ख्याल भी ना आए। एक दिन मेरे दो बेटे मेरी आंख बचाकर पड़ोस के एक बच्चे के साथ खेलने लगे। एकाएक मेरे कानों में दोनों के हंसने की आवाज आई। मैं गिरती पड़ती उधर भागी। देखा तो दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। खुशी के मारे उनके चेहरे ऐसे चमक रहे थे जैसे मंदिरों के कलर। मुझे लगा कि मेरी 4 लाख रोज की आमदनी उन बच्चों की एक हंसी में हमेशा के लिए धुआं हो गई। मैं गुस्से से कांपने लगी। एक के सीने पर सवार हो गई और दूसरे का गला ऐसा दबाया कि वो सांस तक नहीं ले सका। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने दूसरे बच्चे के सीने पर से उतरी तो वो भी खत्म हो चुका था। डॉक्टर, अब मेरी ये एक ही औलाद बची है। इसका कोई ऐसा ऑपरेशन कर दीजिए कि इसे जिंदगी भर हंसी ना आए।
5: ऐसा क्यों चाहती हैं आप?
4: ये भी हंस दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी डॉक्टर।
5: क्यों,
4: कैसी बात करते हैं आप? फिर इसको 2 लाख मिलना बंद नहीं हो जाएंगे?
5: मुझे अफसोस है, मैं कुछ नहीं कर सकता।
4: मैं बड़ी उम्मीदों से आई हूँ आपके पास डॉक्टर।
5: उम्मीद? पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब हमसे मुस्कुराहटों का खजाना छीन लिया गया। मेरा 6 महीने का बच्चा जब बिस्तर पर से उछलकर माँ को देखकर ठुमकता था और उसकी मासूम चहचहाटों को देखकर उसकी माँ हंस हंसकर आवाजें निकालने और उससे खेलने के बजाय अपने मुंह में दुपट्टा ठूसकर सिसकती हुई उसके पास से भाग जाया करती थी, तो मेरा जी चाहता था कि मैं खुदकुशी कर लूं। सारी रात तड़प तड़प कर गुजारता था मैं। मेरी बीवी बच्चे से भागने लगी, दूध पिलाती तो मुंह फेर कर। लगातार एक खौफ में, एक जानलेवा घुटन में जी रहे थे हम। एक दिन मेरे बच्चे ने मुझे देखकर किलकारी मारी। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसे बिस्तर पर से उठाकर सीने से लगा लिया मैंने और खूब तालियां बजाई, हंस हंसकर खूब दुलार किया बच्चे से। मुझे लगा कि मैं इतना हल्का हो गया हूं कि हवा में उड़ रहा हूं। पर मेरी बीवी आज भी बस एक तरफ फटी फटी आंखों से देखती रहती है। पुकारो तो बोलती नहीं, छुओ तो एक ठंडी लाश लगती है वो। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, कैसे मदद करूं मैं तुम्हारी?
6: तो ऐ मेरे अजीजों, ये दास्तान यूं आगे बढ़ती है कि कुछ ही अरसे में उस मुल्क पर ऐसी बदकिस्मती छाई कि खुदा की पनाह, लोग दीवाने हो गए। सरकार का इंतजाम दरहम बरहम होने लगा। तभी मुल्क के जहां दीदा कुछ बूढ़ों को अक्ल आई और उन्होंने हवा की देवी को फिर अपने पास बुलाया। एक बार फिर बहुत बड़ा जलसा हुआ।

0: इसमें आलिमों और दानिश्वरों ने बड़े पैमाने पर शिरकत की।
1: आइए आइए आइए देवी जी, आइए आइए आइए देवी जी। आपको हमने यह इसलिए आने की दावत दी है कि हम जिंदगी में कभी ना मुस्कुराने और हंसने की शर्त से बहुत परेशान हो चुके हैं, और हम चाहते हैं कि आप ये शर्त वापस ले लें। हमने फैसला किया है कि हम 2 लाख रुपए रोज की उस गैबी आमदनी से दस्तबरदार होने को तैयार हैं।
2: दोस्तों और अजीजों, मुझे खुशी है कि आपने मुझे जल्दी ही याद कर लिया। मैं अपनी ये शर्त वापस लेने को तैयार हूँ। हाँ, अगर आप चाहें तो इसके बदले में एक दूसरी शर्त लगा सकती हूँ। हो सकता है कि आपको वो शर्त आसान लगे और आप उसको कबूल कर लें।
3: क्या है वो शर्त? बताइए हमें, बताइए बताइए।
2: वो शर्त है कभी ना रोने की।
3: क्या? कभी ना रोने की शर्त?
2: हाँ, किसी भी हाल में एक आंसू भी नहीं निकालने की। जो जरा भी रोएगा वो उस गैबी दौलत से महरूम हो जाएगा।
3: महरूम हो जाएगा?
1: लगता है ये शर्त माकूल है।
3: ये शर्त माकूल है।
1: अरे भाई ठीक है ठीक है। अरे हंसने की बात और थी, रोने को तो रोका जा सकता है। आराम से रोका जा सकता है। बोलने दो उसे, उसको भी बोलने दो। बोलो
4: यार, शर्त मान ली तो एक दिन तुम सबका आधा जिस्म पत्थर का हो जाएगा।
1: ये क्या बक रहा है? अरे क्या बक रहा है?
4: देखो मैं सच कह रहा हूँ, जिंदगी का पौधा दिलों की नरमी से परवान चलता है, पत्थरों से फूल नहीं उगते। ये शर्त तुम्हें इंसान से राक्षस बना देगी। होशियार होशियार, जिस आंख में आंसू नहीं होते वो राक्षस की आंख होती है। होशियार, खबरदार।
2: आप सब खामोश क्यों हो गए? या तो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों और छोटे छोटे गमों के साथ एक वक्त की रोटी में ही मगन रहिए, या फिर मेरी दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त मानकर अनगिनत दौलत के मालिक बन जाइए। मैं जा रही हूँ, आप इत्मीनान से सोच विचार करके फैसला कर लीजिए। मैं फिर आ जाऊंगी।
0: तो ऐ मेरे दानिशमंद सामईन, इस दास्तान का खात्मा यूं होता है कि कई दिन के लंबे बहस मुबाहसे के बाद उस मुल्क के सारे बाशिंदे इस नतीजे पर पहुंचे कि पागल की बात में बड़ा वजन है। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके हिस्से में आई खुशियां और उसके दुख हैं, जो उसे हंसाते भी हैं और रुलाते भी। इनके साथ वो एक वक्त की रोटी में भी मस्त रहेगा, और इनमें से अगर एक भी कम हो जाए तो वो आधा पत्थर का हो जाएगा। उनका ये फैसला जब हवाओं की देवी ने सुना तो बहुत खुश हुई। इस तरह जैसे उस मुल्क के बाशिंदों के दिन फिरे, खुदा करे आपके भी दिन फिरे। इसी के साथ अब ये दास्तानगो आपसे इजाजत चाहता है। खुदा हाफिज़।

समय अभी आप सुन रहे थे इकबाल मजीद का तहरीर करदा ड्रामा एक वक्त की रोटी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। और लीजिए अब सुनिए कुछ मिले जुले फिल्मी नगमे।

मंगेशकर और अनुप जलोटा की आवाजों में ये नगमा भी आपने सुना। फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। नगमे के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और मौसीकी तरतीब दी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुछ मिले जुले फिल्मी नगमे। अगला नगमा आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है वंदना।

किशोर कुमार की आवाज में ये नगमा था फिल्म जहरीला इंसान का। मौसीकार थे आर डी बर्मन। अगला नगमा आप सुनेंगे कुमार सानू और

किशोर कुमार की आवाज में ये नगमा भी आपने सुना। फिल्म का नाम था याराना। मौसिकार थे राजेश रोशन। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से इस वक्त आप सुन रहे हैं कुछ मिले जुले फिल्मी नगमे। अगला नगमा आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमे के बोल लिखे हैं कैफी आजमी ने, मौसिकार हैं मदन मोहन और फिल्म का नाम है हीर राजा।

आशा भोसले और मोहम्मद अजीज को भी आपने सुना। फिल्म का नाम था मुद्दत। नामा निगार थे इंदीवर और मौसीकार थे बप्पी लहरी। और लीजिए अब सुनिए इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, परवीन सुल्ताना की आवाज में कुदरत फिल्म का नगमा। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी और मौसीकार हैं आर डी बर्मन।

पर भी बात की। जनाब मोदी ने बताया कि आसाम में पाए जाने वाले नायाब परिंदे हरगिला को रियासत के बाज हिस्सों में किस तरह अशुभ माना जाता था। उन्होंने कहा कि ये हरगिला परिंदा फितरत को साफ रखने में अहम रोल अदा करता है। वजीर आजम ने कहा कि हयातियाती उलूम की माहिर पूर्णिमा देवी बर्मन ने अवाम के जहन में पैवस्ती से गलत तासुर को बदलने का अहद किया और खवातीन को साइंस पर मबनी हकाइक से वाकिफ कराया। अपने खिताब के आखिर में वजीर आजम ने पानी की बचत पर जोर देते हुए कहा कि बारिश के पानी के हर कतरे को बचा कर रखना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि कैच द रेन मुहिम की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। विक्टोरिया में आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के सदर पैट्रिक हरमीने के साथ दो तरफा बातचीत की है ताकि बाहमी इश्तराक का जायजा लिया जा सके। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने इलाकाई और बाहमी मफाद के बैन अल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी को स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर सदर हरमीने भी मौजूद थे। ज़राअत, खजाने, खला और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में कई समझौतों का तबादला किया गया। सेशल्स ने पायदार तरक्की और माहौलियात के लिए साजगार तरक्की के तय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अहद को तस्लीम करते हुए वजीर आजम को माहौलियाती क्यादत के अपने आला तरीन एजाज गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सरफराज किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये उनके और भारत के शहरियों के लिए एक बड़ा एजाज है। जनाब मोदी ने कहा कि बहरे हिंद एक मुश्तरका घर है और उसकी सिक्योरिटी, पायदार निजाम और खुशहाली मुश्तरका जिम्मेदारी है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने इक्तसादी इश्तराक को और ज्यादा मजबूत और मुस्तकबिल के लिए साजगार बनाने के मामले पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने कहा कि दोनों मुल्क अपनी अपनी सनतों के लिए नए मौके तलाश करने का सिलसिला जारी रखेंगे। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि भारत और सेशेल्स के दरमियान कनेक्टिविटी को वसअत देने के लिए इकदामात किए जाएंगे। मुश्तरका प्रेस बयान में सेशेल्स के सदर ने कहा कि बातचीत जामे और दूरंदेशी पर मबनी रही, जिससे भारत और सेशेल्स के दरमियान दोस्ती और बाहमी एतमाद के मजबूत रिश्तों की अक्कासी होती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक कि उन्हें पूरे सफर के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजात हासिल न हो जाएं। ऑपरेशन एमिस्ताद के तहत भेजी गई भारतीय इमदाद वेनेजुएला पहुंच गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया है कि फील्ड अस्पताल यूनिट इमदादी रसद, दवाओं और तिब्बी साजो सामान से वहां जलजले से मुतासर इलाकों में इमदादी कोशिशों को तकवीत मिलेगी। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि आइंदा 3 से 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के शुमाली बहरे अरब के मजीद इलाकों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड के बाज इलाकों तक पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। उधर महकमे मौसमियात ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद गर्मी जारी रहने की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है। अमरीका और ईरान के दरमियान पहले से ही कमजोर जंगबंदी टूट गई है। ICC खवातीन के T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में आज भारत ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। मर्दों के क्रिकेट में भारत और मेजबान आयरलैंड के दरमियान दो मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी T20 मैच आज बेलफास्ट में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंदरूनी मुल्क दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुन्दर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। वजीर आजम ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज C-295 की पहली परवाज मुकम्मल होने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने, नीज कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तय तशक्कुर का इजहार किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में वफूद की सतह की बातचीत के बाद सेहत, ज़राअत, खजाने और खला समेत मुख्तलिफ शोबों में समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ए आई आर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस। शाम के 5 बजने को हैं, अब उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्ताम पजीर होती हैं। रात 9:15 पर तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।

0: के 10 बजे तक आप हमारे नशरियात मीडियम वेव 1584 किलो हर्ट्ज, मीडियम वेव 684 किलो हर्ट्ज, FM 1.1 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमें सुन सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मीडियम वेव सोचिंगना गबगेना यूशुज बिन एजबी क्यू लोहर्स, मीडियम वेव टुगेना यूशुज बिन एजबी क्यू लोहर्स, FM 11.1 MHz या मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR का घचस आकाशवाणी करगिली का नजर न्यूज दिदिंग ई जापो आदि जून इलजे यूशु सबगत दिदिंग फ्रचुपत पी प्रोग्राम उन खुरे गचाया यंति दुनो लेबसे गची जूना सलाम पो फ्रदमोचन सोशी सरवा सनला दुआया प्रोग्राम सदाकल्ला गोजुबेत दी प्रोग्रामी रक्से का ज्ञान मजर सखमा कुरानी तिलावत ना तर्जुमा मोलखान पंत हाजी मोहम्मद अमीन
1: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: I came here because I believe that Seychelles occupies a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted.

0: nation is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशेल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है. श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशेल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है.
0: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया. सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया. प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया. गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है. श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है. आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है. श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी. अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं. ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई. भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है. अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया. ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है. भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today stated that climate action must be guided by fairness, responsibility and equity. In his special address to the National Assembly of Seychelles, Prime Minister said, "This is the essence of climate justice." He emphasized that Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive and where international institutions reflect contemporary realities.
0: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively, and fairly.
2: Mr. Modi said Seychelles occupies a special place in India's vision for the Indian

0: نحن سبعين تيز أكاشواني دهلي كنا هندي نانجليزيانو خبرنا سنا بينت بين ميديا ويكا ديو أكاشواني كارجيلي.
1: टेंजरीन बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

0: उनको सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी तफसील भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
0: क्या?
2: ऐसे पॉपअप से होशियार रहो, स्कैमर्स जाती तफसीलात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: ओ
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
0: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कर पाते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
0: कूल रहो।

0: rangi business un lasket tang mifia lenchik akashwani rox yanti chonglenun local in ya fayuli thoki kain akashwani stanchain customer un sapile pis cups mangmu darene antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chigika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242। सुनो ना।
1: हाँ।
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: ग्लोबल लेवल का गता बोरगो जुनतांग कों हागोरिक सालिंजे ग्यालाबासे हागो चुकना तेने मिमा लांगतेने युंगता हागोते तेनांगा छगलास कुन गता ये समेत मने बिल्कुल डेमो चोसे डुपचा जिनो गेले पेर नंगता दरसा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर रि गता के नंग हर ब्लो का गता योतिनो गेले सोंग बजा ते छंग मे नंगा तेने इजुगी मताए प्राइमरी सेंटर बो स्टोर बो चोक्स पोंगता यो तिनो सेंटर बोले मारते नंगता टर्शियरी सेंटर जंजिंग आता यंग स्टोर चोक्स पोंग चनले कानंगा ची संगमा आता कलेक्ट चोकन बो बेलिंग चोसते त्यो सेग्रीगेट चोसे नंग बेल चोसे नंग तेने ते संगमा ठीक पैक चोसे नंग तेने गता नाम सुखपा का नंगता गिल नंगता यु कल मिकल ले तेते सुखपा नंगता फिलहाल जी फिया हाल जी की ना स्टोर जी की ना गता जग से बोर्गो से पाले तेते सुख पांगता बोर्चा से दे स्टोर गुना गता टर्शियरी सेंटर गुना गता इन चोंग एंचे दुगले सोंग बजंग तेने ते संग में मौका गता मशन दे देमो चो से गता नेन गचे दुगले तो मेन पते ने यंग गता इन खाप चिक चिक नुगले लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर बोले युमा इंपोर्टेंट स्पेरा चिक चिक दुग यंग चे जुना तेने दंग दिरिया गता मशन दे जिक्स दुगले NRLM through tene ngata group mamang po jing ngata do te du gyale SSG kasa song pasang te self help group bi tene ngata group sangme phia tene nasa jing ngata khwa gyalek ba semana miru gale
1: kasa kasa
0: song pasang te nasa sangma sen ngata last choice nasa rik shed rik tene ngata center rik ngata do chocha siang ina moka ngata thopcha sing ngata ina scap thon du kasa
1: kasa kasa
0: tene tola tene ngata jipa bi ka tene ngata climate क्लाइमेट पों अतंग सुंग ग्यूज मेट क्या गताए यार गुन लांग गताए कजुक को टाइम री का तेने गताए छुरी गताए योंस्ता छरपारी तांस्ता ले फ्लाश फ्लार री छरपारी गताए तांस्ता तेज कप्स कुनी का तेने गताए यंग गताए इन अंगा इंजीनियर का गुनी ना गताए इमीडिएटली प्लान री जक्स जाते तेने मिमान नया पो ट्रैप्स चोस तेले इन अंग तेने ते था लास्ट कुनांग तेने गताए इन जत गेंच से तेने मौका गताए इना तंदु कस
1: बख्शी सर मन अर्धम कि रेदि पोर्ण जी के जिप्सल नंबा मीमांस ना जी एम जी नरेगी स्कूल जी राम जी स्कीम इन जो ची ची जक्स या सोमा स्कीम दिन ची ओं चाजिन नचुक सोमा स्पेरा दिखा दिया एड सो स्कूल अमल यूनिट पिन बख्शी सर यारी कि न्यास पेरा चिट्ठी आते से फ्रालुक्स बिट की पंचायत भवन सर पंचायत भवन जिसपा घुमा नगाता पंचायत घर चिक सिख पत मसल दक्षा पंचायत भवन जिसपा तन नगाता छिनमिक थोनो पसर दी पंचायत भवन पु गजुक चेयर शिक्षा जिन सर दी नंगजोंस या दियानु को नगाता युल्पिक सोपा खचिक नगाता दियानु डेस पर गुस्पा युल खचिका सर ले चाने दी पंचायत भवन पिस्कोला चीजर न सर दियो नगाता जना जीराम जी स्कीम इन नंगजोंस नगाता रसिक पा या जना मीमांग सुन द थप चाजिन
0: पंचायत लेवल आजाद ना दिखते जैसे कि मीटिंग पंचायत घर बिना तेजाम सिंगता मीटिंग हाल गुन मा छिनमोरी यौचामेन भवन छिनमोरी यौचामेन सोम बजा इ पंचायत भवन इना तंग इंजीनियर यूनपो दसा करगिल दानी का तेने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर युग से होती नो एडब्ल्यू युग से होती नो संगमापो टॉप जाते हायर अथॉरिटीज को नापो गजरा कंसर्न हायर अथॉरिटीज को नापो टॉप जाते तेने इनंगा तेने स्टेक होल्डर संगमापो टॉप जाते तेना तेने डिजाइन गुन गता गैसपारिक बस से हाले तेना मिट्टिया आजाद गंचास तेने यंग गता देमोरिंग ना सुकत स्क्योद ना ले गता छिनमोरिक स्क्योद अंगापो खुआ गता युग गंचास से तेने तेना सुविधा रिंग गता बोरा जचेस तेना चोला तेने गता यंग ते मीटिंग गुनी नंगा किचन बिचन रिक गता सोल्जा वोल्जा रिक जचेस या गता लंच वंच रिक जचेस सिंग गता ते भी अंग गता सुविधा रिक बोरचेस ले तेने मीमांस यंग फियांग तेना गता तेने लदेचो दि थोकपांग गता देना प्रोविजन बोर गेन जस सोखिंगा थोंदु तेना ngampo पार्किंग बर्किया गता इन आगे गता बोर गेन जस तेने गता इन मोका गा छोरा रगे लकस
1: बक्सी सलेम नर देमो कि ओचे सिने तुस गता दि तोसे लसुन पंचायत भवन सोखसुन गते रगेसेत करगिली या ब्लॉक डिपार्टमेंट इन जोंस एमजी नरेगे नाउ जोंस खासकर जीराम जी स्कीम दसा गता एमजी नरेगा गुरते गता दि स्कीम बिल नाउ जोंस लास्ट चोचा जिनम दुइन गता दि तोसे लसुन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो चाना दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पुंग नंगपा सगी खेमसरी रूरल एरिया ने गांव लेवल रूरल डिपार्टमेंट पी तरफ ना यदि सकलेन में गाड़ी रिखापते

0: داستان سخت پایانتز پولگی خبرون لسنا بیند پین میڈیا میکا دیو آکاشوانی کرگیلین.
1: Jangi business un lasket tang mifia lenchik akashwani rox yanti chonglenun localin ya fayuli thogikain akashwani stanchain customer un sapilepi scaps mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donarin ginseyot booking befia call bazat 8700014242 ka.
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख.
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प.
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग.
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता.
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
3: 8700014242. सुनो ना.
2: हाँ.
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ.
2: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं.
2: मुझसे.
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर.
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है.
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ.
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: मीडियो में का जो आकाशवाणी करगिल लेन वक्स फो तुस दुन्ना मिले नुशुगे शेंदो कसा था आकाशवाणी श्रीनगर करना उर्दियानो खबर उन्ना तफसीलन रिलेवेत रिलेला डांवाजात.
4: हमेशा शॉपिंग.
5: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है.
7: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा.
5: आई नो ना.
7: आरबीआई कहता है
8: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली.

0: और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि भारत ने इस महीने मुल्क की सिक्योरिटी और खुद कफालत से वाबस्ता कामयाबी हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत समुद्र से आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। उन्होंने योग के बैनुल अक़वामी दिन का भी जिक्र किया, जिसमें पूरी दुनिया के लोगों ने भारत की कोशिशों के साथ मिलकर कदम बढ़ाया। उन्होंने अहमदाबाद में मुनाकदा आलमी योग आसन चैंपियनशिप का भी जिक्र किया, जहां भारत ने सोने के 102 तमगों समेत मजमुई तौर 114 तमगे जीते।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तामीर में आवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा असासा है। बीजेपी के एहतमाम से मन की बात प्रोग्राम सुनने के लिए कई नशस्तें मुनाकद की गईं। भटिंडी जम्मू में मुनाकद की गई इसी तरह की एक नशस्त में पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर ने भी वज़ीर-ए-आज़म का रेडियो प्रोग्राम सुना। इस मौके पर दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि भारत और सेशल्स के माबैन सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। उन्होंने माहौलियाती तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए आलमी सतह पर ठोस और संजीदा कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया।
0: क्लाइमेट एक्शन मस्ट बी गाइडेड बाय फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इक्विटी। दिस इज द एसेंस ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। इंडिया हैज सॉट टू लीड बाय एग्जांपल। ओवर द लास्ट डेकेड वी हैव अंडरटेकन वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपांशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। वी हैव चैंपियन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल थ्रू मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। Through our initiatives like International Solar Alliance, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, Global Biofuel Alliance and Ek Ped Maa Ke Naam, a tree for mother, we have worked with partner countries to boost the green transition.
1: उससे कल वज़ीर-ए-आज़म ने सेशल्स के सदर पैट्रिक हार्मनी के साथ दो तरफा बातचीत के दौरान बाहमी मफाद की कई मामलात पर तबादला ख्याल किया। नरेंद्र मोदी को माहौलियात के तहफ्फुज़ और दायमी तरक्की के फरोग के लिए सेशल्स के आला तरीन अवार्ड गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सरफराज किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बालतल का दौरा किया। वहां अफसरों की एक मीटिंग में उन्होंने यात्रियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात और सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि हर श्रद्धालु के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा को एक यादगार रूहानी सफर बनाने की खातिर तमाम इकदाम किए जाएंगे। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बालतल में दीघी सफाई सुथराई के डायरेक्टरेट की शुभम शिवम मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह मुहिम एक पायदार और साफ शफाफ श्री अमरनाथ जी यात्रा के हुसूल के लिए एक बड़ा कदम है। एलजी ने मुतादिद माहौलियाती अख्तरा के साथ साथ नई वेबसाइट, पिलग्रिमेज एंथम और लोगों की नकाब कुशाई भी की। उन्होंने कहा कि दीघी सफाई सुथराई के डायरेक्टरेट के तमाम अख्तराई इकदाम लगन और नज्म जब्त पर मुनहसर हैं और उन्हें हर स्टॉक होल्डर को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अंजाम देना चाहिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत के मद्देनजर कोलगाम में पुलिस ने बीएसएफ और दीगर सलामती एजेंसियों के साथ मिलकर आज रेलवे स्टेशन काजीगुंड पर एक मॉक ड्रिल का अहतमाम किया। हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि इस मॉक ड्रिल का मकसद मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के माबैन तालमेल को मजीद मुस्तहकम बनाना था। इसी दौरान पुलिस ने लंगनबल पहलगाम, नुनवन बेस कैंप और गांदरबल में भी मॉक ड्रिल्स का अहतमाम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों से ताकीद की है कि वो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के सफीर बनकर इस मुहिम को कामयाबी से हमकिनार कराएं। लोकभवन श्रीनगर में सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के रजाकारों के साथ बात करते हुए एलजी ने नशा मुक्त अभियान से मुतालिक जानकारी आम करने के लिए इस तंजीम की सराहना की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फाउंडेशन की जानिब से शुरू की जा रही मुहिम मुलाकात का भी आगाज किया। इस मुहिम का मकसद मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को एक प्लेटफार्म पर जमा करके उन्हें रिवायत और सकाफती विरसे से मुतालिक

0: Dasan sapa yang tu jil tu nuri yang nabi mina mereka itu akashwani kargilin waspo tu sot gerna mina yang cumi naga sosok kasat akashwani Delhi kena Hindi, Inggrisi, dona Urdu no khawar nuri lebe lela down bazar.
1: पति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की, कहा भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया, वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

0: सक्षम होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हरमिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो

0: हुए हैं ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: असम के धेमाजी जिले में सीमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 7 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है, हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heat wave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
3: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talk with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. Prime Minister Modi expressed happiness that an MOU has been signed to implement UPI in Seychelles.
3: Hum digital public infrastructure mein Bharat ke safal anubhavon ko सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
2: He said the India-Seychelles partnership in the health sector has stood the test of time. He said the MOU

0: आपके साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी क़ुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाक़यात से मुताल्लिक पाकिस्तान के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में ख़वातीन के T20 आलमी कप के अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है और मर्दों की क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैनुल अक़वामी मैच में मेज़बान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रनों का निशाना मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत बहिरे हिंद को एक ऐसा खित्ता समझता है जहां इक्तिसादी खुशहाली के साथ साथ समंदरी तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाता है, जहां शराकत दारी साइज पर मबनी नहीं बल्कि बाहमी इज्जत और एतमाद पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का एक समंदर बनाता है।
1: मेरी सेशेल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: जनाब मोदी विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वक्त की सतह की बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी तआवुन के तमाम शोबों का जायजा लिया और बाहमी मफाद के इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक ने ज़राअत मालियात खला और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से समझौतों का तबादला भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इजहार मसर्रत किया कि सेशेल्स में UPI का आगाज करने के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशेल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
0: उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में भारत सेशल शराकतदारी वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। उन्होंने कहा कि आज जन औषधि से मुतालिक जिस मुफाहमत नामे पर दस्तखत हुए हैं वो सेशल्स के अवाम को मेयारी और किफायती अदविया फराहम करने में मदद करेगा। इज्तिमा से खिताब करते हुए सेशल्स के सदर हर्मिनी ने कहा के बाहमी ताल्लुकात में बहिरे हिंद का खित्ता मरकजी हैसियत रखता है। दोनों मुल्कों ने समंदरी कज़ाकी मनशियात की नाजायज तजारत गैर कानूनी माहीगीरी और सरहद पार के जरायम के तई अपने अहद का एदा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ़ और पायदार तरक्की में क़्यादत के लिए सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। सेशेल्स के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को यह पुरवकार एजाज दिया। वज़ीर-ए-आज़म को यह एजाज उनकी माहौलियात साजगार क़यादत और तरक्की याफ्ता ममालिक के बढ़ते हुए मफादात नीज नीलगू मईशत

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर इन्हिसार करने के अपने रुझान को तर्क करना चाहिए जिसे वो मुल्क की पॉलिसी के एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल करता है। सऊदी अरब में आज मुल्क की तेल कंपनी आरामको का एक हेलीकॉप्टर आबनाए हुरमुज के मगरिब में खलीज के मशरकी साहिल पर रास तनूरा में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए। आरामको ने जुमा को खलीज में अपने रास तनूरा टर्मिनल पर खाम तेल की लोडिंग दोबारा शुरू कर दी थी। वाजह है कि मगरबी एशिया तनाजे की वजह से यहां खाम तेल की लोडिंग तकरीबन 4 माह से बंद थी। सऊदी अरब की तवानाई की वजारत के मुताबिक तमाम महलूकीन सऊदी अरब के शहरी थे। वजारत ने मजीद कहा कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। फ्रांस के शुमाली खित्ते में आज एक स्काई ड्राइविंग तैयारा गिरकर तबाह हो गया जिसके नतीजे में उसमें सवार 11 अफराद हलाक हो गए। मर्थे मोसिल के नुमाइंदे यवेस सेगुई ने बताया कि तैयारा नैन्सी शहर के करीब गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद इमदादी टीमें जाए वकूआ पर पहुंच गईं, जबकि हुक्काम ने हादसे की तहकीकात के सिलसिले में ऐनी शाहिदीन के बयानात जमा करना शुरू कर दिए हैं। यूरोप को शदीद तरीन गर्मी का सामना है। फ्रांस, जर्मनी और चेक जमहूरिया समेत कई मुल्कों में हफ्ते के आखिर में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। फ्रांस के महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है कि मुल्क में शदीद गर्मी की वजह से बुध से अब तक तकरीबन 1000 अमवात हो चुकी हैं। इनमें से 85% अमवात बुजुर्ग अफराद की दर्ज की गई हैं। फ्रांस के मुख्तलिफ हिस्सों में इस हफ्ते दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। पेरिस में एफिल टावर और लुएरे म्यूजियम भी शदीद गर्मी के बायस जल्द ही बंद कर दिए जा रहे हैं। जमहूरिया चेक और जर्मनी में भी दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल के लिए जैली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई मूसलाधार बारिश के साथ कुछ मकामात पर शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा दो रोज के दौरान शुमाल मशरकी भारत, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना और विदर्भ के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। राजधानी दिल्ली में जुजवी तौर पर मौसम के अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। आसाम के धीमाजी में जिले और पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश में कई दिन तक शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। ज़राअत और किसानों की बहबूद निजदेही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के विजन को हकीकत का रंग देने में गांवों के मरकजी किरदार को उजागर किया है। ICC खवातीन T20 आलमी कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 171 रन का निशाना दिया है। अब से कुछ देर पहले तक ऑस्ट्रेलिया ने हदफ का पीछा करते हुए 7 ओवर्स में 2 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। मर्दों के क्रिकेट में बेलफास्ट में जारी 2 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में मेजबान आयरलैंड ने भारत को जीत के लिए 155 रन का निशाना दिया है। जवाब में भारत ने आखिरी खबरें मिलने तक 10 ओवर्स में 4 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। इससे कबल पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। हैरी टेक्टर ने 47 गेंदों पर 53 रन की इनिंग खेली। अहमदाबाद में आज ABC मर्दों के वॉलीबॉल कप में भारत ने प्लेऑफ में तीसरे मकाम के लिए खेलते हुए बहरेन को 3-1 से शिकस्त देकर कांसे का तमगा अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 40 बरस बाद इस टूर्नामेंट में पहली बार तमगा हासिल किया और अपनी सरजमीन पर एक यादगार मुहिम का अख्तिताम किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी क़ुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है।